आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। एक महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन

में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नाम

वार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में चार चार सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में तीन तीन सीटें, झारखंड में दो सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में एक एक सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में एक एक सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान और मतगणना 18 तारीख को होगी। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति ने विधान परिषद चुनाव के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के उलानबटार स्थित गंदतेग चेगलिंग मठ में अरहत सारिपुत्र और अरहत महामोगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए लाया गया है, जो 10 जून तक चलेगी। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार IPL खिताब जीत लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM रेनबो 101.9। रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन। एंड यस, स्टूडियो में 10:04 हो रहे हैं, मतलब गुड वाइब्स ऑफिशियली ऑन हो चुकी है। मैं हूं आपका दोस्त RJ JD यानी जयदीप, और अगले पूरे 4 घंटों तक हम साथ रहेंगे एक ब्यूटीफुल जर्नी में, जहां होंगी दिल से बातें, थोड़ी सी हंसी, थोड़ा मोटिवेशन और बहुत सारे खूबसूरत गाने। और दोस्तों, आज है June 1, मतलब 2026 का 6th month शुरू हो चुका है। हाफ ऑफ द ईयर ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। अब जरा ऑनेस्टली सोचिए, न्यू ईयर के टाइम जो

साथ रहेंगे एक ब्यूटीफुल जर्नी में, जहां होंगी दिल से बातें, थोड़ी सी हंसी, थोड़ा मोटिवेशन और बहुत सारे खूबसूरत गाने। और दोस्तों, आज है जून 1, मतलब 2026 का 6th month शुरू हो चुका है। हाफ ऑफ द ईयर ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। अब जरा ऑनेस्टली सोचिए, न्यू ईयर के टाइम जो रेजोल्यूशंस बनाए थे, वर्कआउट, हेल्थी लाइफस्टाइल, लेस मोबाइल यूसेज, अर्ली स्लीपिंग या फिर सेल्फ इंप्रूवमेंट के, उनमें से कितने कंप्लीट हुए? और अगर नहीं हुए तो कोई बात नहीं, लाइफ कोई एग्जाम नहीं है जहां सिर्फ जनवरी 1 को ही न्यू बिगनिंग अलाउड है। अगर आप डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, टायर्ड फील कर रहे हो या लग रहा है अब तो लेट हो गया, देन लिसन केयरफुली। आज का दिन ही परफेक्ट है रीस्टार्ट करने के लिए, और मैं हूं ना आपके साथ। एनर्जी को पंप करिए, स्माइल थोड़ी और ब्राइट करिए और खुद से एक प्रॉमिस कीजिए, मैं रुकूंगा नहीं। जी हाँ, आप खुद से प्रॉमिस कीजिए कि मैं रुकूंगा नहीं। तो दोस्तों, इसी पॉजिटिव वाइब्स के साथ शो की शुरुआत करते हैं एक छोटे से, हल्के से, खूबसूरत सर धमाकेदार म्यूजिकल ब्रेक के साथ।

तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM रेनबो 101.9 और मैं हूं आपका दोस्त RJ JD। आज जून फर्स्ट पर सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे। जी हाँ, वर्ल्ड मिल्क डे। आपने कभी सोचा कि हाँ, दूध का भी दिवस मनाया जाता है? जी हाँ, ज़रूर मनाया जाता है, क्योंकि दूध इतना इतना इम्पोर्टेंट हमारे लाइफ का हिस्सा है। हमारी ज़िंदगी, हमारे पैदा होने के बाद हमारी ज़िंदगी शुरुआत होती है दूध से। जी हाँ, माँ का दूध से। तो दोस्तों, ऑनेस्टली दूध के साथ हम इंडियंस का रिलेशन या रिलेशनशिप बहुत इमोशनल होता है। बचपन में मम्मी का एक डायलॉग ऑलमोस्ट हर घर में कॉमन था, पहले दूध ख़त्म करो। जी हाँ, और हम एक्सक्यूज़ बना देते थे, नहीं गरम है, या नहीं तो मलाई कौन डालता है इसमें, छाना नहीं तुमने। जी, कुछ लोगों को मलाई पसंद नहीं होता है और कुछ लोग मलाई बहुत क्या बोलते हैं, स्वादिष्ट लगता है कुछ लोगों को। और एक इंटरेस्टिंग बात, इंडिया दुनिया के सबसे बड़े मिल्क प्रोड्यूसर्स में से एक है और इसके पीछे लाखों डेयरी फार्मर्स की मेहनतों की हाथ है। अब थोड़ा मिथ और थोड़ा साइंस। कई लोग कहते हैं दूध पीने से पेट दर्द करता है, लेकिन साइंस कहता है कि हर बॉडी डिफरेंट होती है। मिल्क में कैल्शियम, प्रोटीन्स एंड बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं। एंड मिल्क को होल फूड भी कहा जाता है, जिसमें ऑलमोस्ट बहुत बहुत प्रकार के न्यूट्रिशंस शामिल होते हैं उसमें। एंड रही बात जो लोग बोलते हैं कि दूध पीने से मेरा पेट दर्द करता है, सर दर्द करता है, हर हर किसी की बॉडी सेम नहीं होती है। कुछ लोग लैक्टोस इंटॉलरेंट होते हैं, वो एक काइंड ऑफ साइंटिफिक इशू है बॉडी का, जिनको दूध का जो बैक्टीरिया होता है वो नहीं जमता है। तो चलिए, हम अभी लगाते हैं ब्यूटीफुल ट्रैक और बातें करेंगे ढेर सारी, बहुत सी बातें हैं मेरे पास शेयर करने के लिए।

बहुत खास दिन है। जानते हो क्या है वो? आज ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स भी है। जी हाँ, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, यानी कि वो समर्पित हैं हमारे माता और पिता के लिए। ये दिन उन माँ बाप को डेडिकेट किया गया है जो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अपने बच्चों के लिए जीते हैं। पेरेंट्स शायद दुनिया के वो लोग होते हैं जो खुद टेंशन में होते हैं, लेकिन बच्चों को टेंशन फील नहीं होने देते, खुद तक जाते ही सब कुछ अपने तक ले लेते हैं, पर बच्चों के सामने कभी थकने नहीं देते। पहले के जमाने में घर छोटे होते थे, लेकिन दिल और रिश्ते बहुत बड़े होते थे। आज घर बड़े हो गए, लेकिन कभी कभी कॉन्वर्जेशंस, हाँ बातचीत छोटी हो गई है। हर जगह पर देखा जा सकता है ये। हाँ, उनमें से एक मुख्य कारण है अपना मोबाइल। जी हाँ, कुछ परिस्थितियाँ ये भी है, कुछ लोग पढ़ाई के चक्कर में कहीं और देश चले जाते हैं और वो वहीं पर बस जाते हैं। अफसोस की बात है कि उन माँ बाप पर क्या बीतती होंगी जब अपना अपना अपने औलाद, अपना बच्चा कहीं और जाकर रहे, अपने साथ ना रहे। वो सिर्फ माँ बाप ही समझ सकते हैं, और वो आप भी समझ सकते हैं जब आप पेरेंट बन जाओगे। लेकिन पहले ना फैमिली साथ बैठकर खाना खाती थी, बातें करती थी। आज अक्सर सभी एक रूम में ही होते हैं, लेकिन अलग अलग स्क्रीन्स पर होते हैं। जी हाँ, अगर एक बात बोला जाए तो अभी इतना बड़ा चेंज आ गया है हमारे लाइफ्स में कि इवन कहीं कहीं पर, कहीं घरों में इवन पेरेंट्स भी स्क्रीन के सामने ही बैठे रहते हैं स्क्रॉल करते हुए, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। पहले के ज़माने में तो बच्चे होते थे, बात करते थे, लड़ाई करते थे, सब होता था, लेकिन अभी ना बातचीत होती है, ना कोई ज़िद होती है। सिर्फ ज़िद होती है तो सिर्फ फ़ोन दिलाने की और इंटरनेट लगवाने की उसमें, वरना तो और कोई ज़िद नहीं होती है। तो जी, पेरेंट्स के लिए प्यार का मतलब होता है केयर, सिक्योरिटी और फ्यूचर बनाना, और आज की जनरेशन के लिए प्यार का मतलब है अंडरस्टैंडिंग, फ्रीडम और इमोशनल कनेक्शन। बस इसी डिफरेंस की वजह से कभी कभी डिस्टेंस आ जाता है, लेकिन सच ये है पेरेंट्स बच्चों के बीच प्यार, पेरेंट्स और बच्चों के बीच प्यार आज भी उतना ही गहरा है, सिर्फ उसे एक्सप्रेस करने का तरीका बदल चुका है। जी हाँ, उसे एक्सप्रेस करने का तरीका बहुत बदल चुका है। कभी कभी पेरेंट्स को एक्सपेंसिव गिफ्ट्स नहीं चाहिए होते हैं, बस थोड़ा वक्त, थोड़ा रेस्पेक्ट और थोड़ा प्यार सा, आप कैसे हैं, ये ही काफ़ी होता है। तो इस ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स पर सिर्फ सोशल मीडिया पर स्टेटस मत लगाइए जी हाँ, सिर्फ स्टेटस मत लगाइए, कृपया करके ना उनके साथ थोड़ा वक्त बिताइए, उनके उनके हालचाल पूछिए और देखिए उनकी तबीयत ठीक है या नहीं, उनकी ज़रूरतें पूरी हो रही है या नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, चलिए हम सुनते हैं एक खूबसूरत सा गाना माइकल जैक्सन का। गाने का नाम है यू आर नॉट अलोन। जी हाँ, आप अपने पेरेंट्स को भी बोलिए यू आर नॉट अलोन, क्योंकि वो बहुत अलोन महसूस कर रहे होंगे। सोचिए एक बार,

दोस्तों, आपका स्वागत है। स्टूडियो में 11:04 हो रहे हैं एंड अभी आपके लिए एक स्पेशल कार्यक्रम। दोस्तों, भारत की आवाज़ आकाशवाणी, जिसने दशकों तक हर घर, हर गांव और हर दिल से एक अनोखा रिश्ता बनाया है। आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष। एक समय था जब रेडियो सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था। सुबह की शुरुआत आकाशवाणी के समाचार और भजनों से होती।

की शुरुआत आकाशवाणी के समाचार और भजनों से होती थी। गांव के खेतों में काम करते किसान ट्रांसिस्टर लेकर मौसम और खेती की जानकारी सुना करते थे। सिलाई की दुकानों पर दर्जी गीतों और कार्यक्रमों के साथ अपना काम करता था। चाय की टपोरियों में तो लोग क्रिकेट कमेंट्री और खबरें सुनने के लिए जमा हो जाते थे। और घरों में माओं और बहनों के लिए आकाशवाणी एक साथी की तरह था। महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम, स्वास्थ्य, शिक्षा और घर गृहस्थी से जुड़ी जानकारी आकाशवाणी ने ना सिर्फ मनोरंजन दिया बल्कि महिलाओं को, युवाओं को और सभी के जिंदगी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी सुखद और 90 साल की अनमोल सफर के बारे में ये एक स्पेशल प्रोग्राम है।

0: सुने दिल वाला।
1: आपको ये बताते हुए हो रहा है अपार हर्ष,
2: आकाशवाणी ने पूर्ण किए हैं असीम 90 वर्ष।
1: इन 90 वर्षों में रहा बहुत उत्कर्ष,
2: जहां आकाशवाणी ने किया आप सभी के दिलों को स्पर्श।
1: इससे निकलता है यही निष्कर्ष
2: कि आज आकाशवाणी बन गया है एक सच्चा आदर्श,
1: जहां बताते हैं सैनिकों का संघर्ष,
2: सखी सहेली का विमर्श,
1: जरूरतमंदों के लिए परामर्श,
2: और ये सभी आप सभी के लिए हमारी ओर से
1: सहर्ष।

नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी। यह वर्ष भारत के रेडियो इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि आकाशवाणी ने 90 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, सन 1936 यानी कि 1936 में शुरू हुआ यह सफर आज हर भारतीय की आवाज बन चुका है, चाहे वह गांव हो, शहर हो, सीमा पर तैनात जवान हो या घर की महिलाएं। हर दिल अजीज बने इस रेडियो की जब भारत में शुरुआत हुई थी, तब इसे इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस कहा जाता था। उत्तरोत्तर यही आकाशवाणी बना, बल्कि यह कहना गलत नहीं होगा कि यही आकाशवाणी आज लगभग प्रत्येक भारतीय की जुबानी बन गया है।

स्वतंत्रता संघर्ष के दौर में आकाशवाणी ने लोगों के दिलों में जोश भरने का काम किया। ये वही माध्यम था जिसने हर भारतीय को एक सूत्र में जोड़कर पराधीनता की बेड़ियों को तोड़ा। धीरे धीरे हर दिल की धड़कन बने रेडियो ने हर वर्ग को आपस में जोड़ने की ठानी। विविध भारती की जुबानी। जी बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। सन 1967 यानी कि 1967 में अपने नाम के अनुरूप ही विविध कार्यक्रमों जैसे कि फिल्मी गीत, इंटरव्यू और कहानियों आदि से हर पीढ़ी के भारतीयों को जोड़कर सुपरहिट बना विविध भारती।

पीढ़ी के हर वर्ग को जोड़ने का सामर्थ्य रखने वाले आकाशवाणी ने महिलाओं के लिए भी खास मंच दिया। जी हाँ, सखी सहेली। इस कार्यक्रम में महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के अलावा प्रेरणादायक कहानियाँ साझा की जाती हैं, तो देश की सीमाओं पर तैनात हमारे वीर जवानों के लिए आकाशवाणी का विशेष कार्यक्रम फौजी भाइयों के नाम एक भावनात्मक जुड़ाव है। इसमें उनके परिवारों के संदेश, देशभक्ति गीत और हौसला बढ़ाने वाली बातें शामिल होती हैं।

रेडियो ने केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि ज्ञान भी साझा किया। यक्ष प्रश्न जैसे कार्यक्रमों ने सामाजिक और दार्शनिक विषयों पर सुनने वालों को सोचने के लिए प्रेरित किया तो जीवन के अन्य पहलुओं से भी जोड़ा। आकाशवाणी ने शहरों तक ही नहीं अपितु गांव-गांव तक अपनी पहुंच बनाई। कृषि दर्शन जैसे कार्यक्रमों ने किसानों को नई तकनीक और जानकारी दी।

इन सभी कार्यक्रमों के अलावा युवाओं के लिए युवा वाणी से लेकर ऐतिहासिक म्यूजिक शो बिना का गीतमाला, सुबह का समाचार बुलेटिन हो या आपदा सूचना तक, आकाशवाणी केवल खबरों या कार्यक्रमों का मंच ही नहीं रहा, बल्कि यह वह जगह रही जहां सुरों के बादशाहों ने अपने दिल खोले, अपनी कहानियां सुनाई और भारत की संगीत यात्रा को अमर बना दिया। और अंततः माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद, मन की बात आदि के द्वारा आकाशवाणी भारत के प्रत्येक दिल तक पहुंच चुका है।

0: 90 वर्षों का ये सफर
1: जिसने किया हर दिल पर असर,
0: चल पड़ी है आकाशवाणी की लहर,
1: डगर डगर और शहर शहर,
0: आकाशवाणी बन गया है भारत की पहचान,
1: हर वर्ग हो गया है इसका कद्रदान,
0: अपना सा लगता है यहाँ हर रिश्ता अनजान।
1: चलिए और एक मुकाम तय करते हैं बिखेरते हुए मुस्कान।
0: तो दोस्तों, आकाशवाणी के असीम 90 वर्षों की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।

तो श्रोताओं, वेलकम बैक। ये स्पेशल फीचर था बेमिसाल 90 साल, और इसमें बोली थी प्रीति जामवार और श्रीकांत ओझा की। बहुत खूबसूरत से इन्होंने ये प्रस्तुति की। आशा करते हैं कि आपको ये फीचर पसंद आया होगा। तो दोस्तों, हम हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। स्टूडियो में टाइम है 11:36 और अभी 37। तो हर इंसान की लाइफ में कुछ हैबिट्स ऐसी होती है जो धीरे धीरे इतनी नॉर्मल लगती है कि हमें रियलाइज़ ही नहीं होता कि वो हमारी पर्सनालिटी, हेल्थ और मेंटल पीस को अफेक्ट कर रही है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारे एंसेस्टर्स यानी बड़े बुजुर्ग हमेशा कुछ ना कुछ आदतें समझाते थे। पैर मत हिलाओ, खाते वक्त फोन मत देखो, रात को देर तक मत जगो। उस वक्त हमें लगता था कि ये ना बस ओल्ड स्कूल वार्निंग्स है, लेकिन आज साइंस भी धीरे धीरे उनमें से कुछ बातों को सपोर्ट कर रही है। कुछ नहीं, मेरा मानना है कि बहुत कुछ बातों को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि हर एक कमांड के पीछे ना बहुत बड़ा रीज़न होता है, बहुत बड़ा मीनिंग होता है। और इसी सीरीज में आज का पहला टॉपिक है, यानी कि आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे कॉमन हैबिट्स की। जी हाँ, ऐसे कॉमन हैबिट्स की जो हमें पता ही नहीं चलता है, लेकिन हम उस हैबिट को हम आदत कर चुके हैं। तो पहला टॉपिक है कॉन्स्टेंटली ना पैर हिलाना, लेग शेकिंग हैबिट। अब इंडियन हाउस होल्ड में तो ये बहुत कॉमन है। दादी नानी अक्सर बोलती थी, पैर हिलाने से ना लक्ष्मी चली जाती है। स्पिरिचुअली देखा जाए तो कंटिन्यूसली पैर हिलाना रेस्टलेसनेस और अनस्टेबल एनर्जी का सिंबल माना जाता है। जी हाँ, अनस्टेबल एनर्जी। हमारे एंसेस्टर्स यानी कि हमारे पूर्वज बिलीव करते थे कि बॉडी की हर मूवमेंट एक एनर्जी कैरी करती है, और बिना वजह कॉन्स्टेंटली पैर हिलाना मन की अशांति और इम्पेशेंस, जी हाँ इम्पेशेंस को रिफ्लेक्ट करती है। और इंटरेस्टिंगली साइंस भी कुछ सिमिलर बातें कहता है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग एक्सेसिव यानी कि बहुत ज़्यादा शेकिंग लेग्स, यू नो इट गिव्स यू एंग्जाइटी, दैट्स अ साइन ऑफ एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग, नर्वसनेस या हाइपर एक्टिव माइंड का साइन हो सकता है। कई लोग बिना नोटिस किए ही हैबिट रिपीट करते रहते हैं। लॉन्ग टर्म में ही हैबिट कॉन्सेंट्रेशन और कामनेस को भी अफेक्ट कर सकती है, और सोशली भी कभी कभी सामने वाले को डिस्ट्रैक्शन, जी हाँ डिस्टर्ब भी कर सकता है। मतलब हमारे एल्डर्स हर बात बस अंधविश्वास में नहीं बोलते थे, समझ रहे हो, कोई कुछ चीज़ें ऑब्जर्वेशन और लाइफ एक्सपीरियंस के साथ आती है। तो अगली बार

आपका पैर ऑटोमेटिकली हिलने लगे तो एक सेकेंड रुकिए, सोचिए, शायद बॉडी नहीं माइंड रेस्ट मांग रहा हो। क्या बोलते हो दोस्तों, सोचिए एक बार।

वेलकम बैक दोस्तों। जी हाँ, अब तो आदत सी है हमको ऐसे जीने में। वैसे तो हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे आदतों की जो हमें इतनी बुरी तरीके से लग गई है कि हम उसको अनदेखा करते हैं, और हम जब करते हैं वो हमें महसूस तक नहीं होता है। जी हाँ, हमारे बड़े बुजुर्ग जो बातें हमें बचपन से समझाते आए हैं, उनका कनेक्शन सिर्फ डिसिप्लिन से नहीं, हेल्थ और एनर्जी से भी होता है। आजकल हम मॉडर्न लाइफस्टाइल में कई चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कुछ हैबिट्स ऐसी होती है जो अननोइंगली हमारे पर्सनैलिटी, हेल्थ और इम्प्रेशन दोनों को इफेक्ट करती है। आज की कॉमन बैड हैबिट्स में एक और हैबिट है, बार बार नाक में उंगली डालना। जी हाँ, इसे सुनते हुए गलत मत समझिए, क्योंकि हम अनजाने में ही हम वो करते रहते हैं। अब ये सुनते ही सबको बचपन याद आ गया होगा, जब मम्मी तुरंत बोलती थी, हाथ नीचे करो। दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी और सोशली, स्पिरिचुअली और सोशली देखा जाए तो हमारे एल्डर्स इस हैबिट को अनहाइजीनिक और डिसरेस्पेक्टफुल मानते थे। उनका मानना था कि पब्लिक में ऐसी हैबिट्स इंसान की पर्सनालिटी और सेल्फ डिसिप्लिन को भी रिफ्लेक्ट करती है, और साइंस भी इसी बात को स्ट्रांगली सपोर्ट करता है। जी हाँ, कुछ लोग जो ज़्यादातर आजकल के लोग और बच्चे साइंस में बहुत विश्वास करते हैं। तो हाँ जी भाइयों और बहनों, तो सुन लीजिए, साइंस भी यही बोलता है कि हम दिन भर मोबाइल, डोर, पैसा और ऐसे सरफेस को टच करते हैं, और जब वही फिंगर्स, वही उंगलियां डायरेक्टली हम जब नाक के अंदर डालते हैं, तो जर्म्स बॉडी के अंदर इजीली एंटर कर सकते हैं। डॉक्टर के अकॉर्डिंग एक्सेसिव नोज पिकिंग से, यानी कि ज़्यादा हम लोग अगर नाक में उंगली डालते हैं, तो इन्फेक्शन, नोज ब्लीडिंग, इरिटेशन और कभी कभी छोटे जख्म भी हो सकते हैं। आप समझ रहे हो, आपको शायद पता ना चले, लेकिन देर सवेर वो हो ही जाता है। तो इसीलिए साइकोलॉजी के हिसाब से भी ये हैबिट कभी कभी स्ट्रेस, एंजाइटी, बोर्डम या अनओकेशन रिपीटेटिव बिहेवियर का साइन होता है। जी हाँ, दिस ऑल आर रिलेटेड टू मेंटल इश्यूज। यानी कि आप अपने मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग कीजिए, आप अनकॉन्शियस होते जा रहे हो। अनकॉन्शियस होकर आप कुछ भी कर देते हो और आपको पता तक नहीं चलता, आपको याद भी नहीं रहता है। तो इसीलिए दोस्तों, हमारे एंसेस्टर्स सिर्फ मैनर्स नहीं सिखाते थे, वो हाइजीन और सेल्फ कंट्रोल भी सिखाते रहते हैं हमेशा, और अक्सर हम उसे अनदेखा और अनसुना कर देते हैं। तो अगर ये

हैबिट अननोइंगली रिपीट होती है, थोड़ा कॉन्शियस बनिए, क्योंकि छोटी हैबिट्स ही पर्सनैलिटी का बड़ा इंप्रेशन बनाती है। तो दोस्तों अभी सुनते हैं एक खूबसूरत सा गाना, मेरा फेवरेट, अदनान समी का ऐ उड़ी उड़ी उड़ी। गाने से पहले एक छोटा सा संदेश।

0: काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार किया गया। राज्यपाल आर एन रवि ने मंत्रिपरिषद के 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह का आयोजन कोलकाता के लोक भवन में हुआ। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन बाद में घोषित किए जाने की संभावना है। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन आज से 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। इस महीने की 18 तारीख को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के व्यवसायिक LPG सिलेंडर की कीमतों में 4 प्रमुख शहरों में 42 रुपए से लेकर 53 रुपए 50 पैसे तक की वृद्धि की गई है। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने JEE एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें से 10,107 छात्राएं हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। पिछले 6 वर्षों में इस योजना से लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण मिला है। इसके माध्यम से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण वितरित किए गए। शहरों और कस्बों में इस पहल के माध्यम से 75,00,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। योजना के अंतर्गत अब तक 17,800 करोड़ रूपये से अधिक के ऋण प्रदान किए जा चुके हैं। अफ्रीकी संघ ने इबोला से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आपातकालीन निदान, उपचार और चिकित्सा सामग्री का स्वागत किया है। संघ की स्वास्थ्य एजेंसी अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि ये सामान युगांडा में पूर्वी क्षेत्रीय समन्वय केंद्र के माध्यम से भेजा गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 41 अंक बढ़कर 74,816 पर था, जबकि निफ्टी में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अब से थोड़ी देर पहले ये 23,551 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams.

वेलकम बैक दोस्तों स्टूडियो में। टाइम हो रहा है 12:11 और आप सुन रहे हैं 101.9 FM रेनबो। रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन। तो दोस्तों, हमारे एल्डर्स यानी कि हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर कुछ छोटी छोटी हैबिट्स पर तुरंत टोक देते थे। यानी हमारे बचपन में हमें लगता था, अरे इतनी सी बात पर इतना क्यों बोल रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे समझ आता है कि उनमें से कुछ बातें एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन से आई थी। आज की हैबिट है दांत पिसना या टीथ ग्राइंडिंग। कई लोग स्ट्रेस में सोते वक्त या बिना नोटिस किए अपने दांतों को रब करते रहते हैं। हमारा ये एक पुरानी बिलीव है कि रात में दांत पिसने रेस्टलेसनेस, टेंशन और नेगेटिव एनर्जी का साइन होता है। कुछ एल्डर्स तो ये भी मानते हैं कि ये अंदर की बेचैनी को रिफ्लेक्ट करता है। और सरप्राइजिंगली साइंस भी इसी बात को कंप्लीटली इग्नोर नहीं करता है। जी हाँ, मेडिकल लैंग्वेज में इसे ब्रुक्सियस कहा जाता है। ये हैबिट स्ट्रेस, एंग्जाइटी, एंगर, ओवरथिंकिंग, डिस्टर्ब्ड स्लीप या इमोशनल प्रेशर की वजह से हो सकता है। एक्सेसिव टीथ ग्राइंडिंग से ना जॉ पेन, हेडेक, टूथ डैमेज, सेंसिटिविटी और स्लीप डिस्टर्बेंस भी हो सकती है। कई लोगों को खुद पता नहीं होता है कि वो स्लीप में टीथ ग्राइंड कर रहे हैं। मतलब हमारे एंसेस्टर्स हर हैबिट को सिर्फ सुपरस्टिशियस के एंगल से नहीं देखते थे, वो इंसान की मेंटल और फिजिकल स्टेट को भी ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर आप ये आपके आसपास कोई बार बार दांत पिस रहा है तो उसे इग्नोर मत कीजिए। शायद बॉडी एक साइलेंट सिग्नल दे रहा हो, माइंड को थोड़ा पीस और रेस्ट चाहिए। तो दोस्तों, क्या आप भी अपने अपने परिवार में ऑब्जर्व किया है कि अगर आपका भाई या आपके पेरेंट्स या आपके बच्चे रात में दांत पिस रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो शायद किसी मेंटल स्ट्रेस में हो। तो सोचिए और पूछिए। चलिए दोस्तों, अभी हम प्ले करते हैं एक खूबसूरत सा गाना वुल्फ्स, और इसे गाया है सेलिना गोमेज़ ने।

दोस्तों, बहुत लोग इसे सीरियस नहीं लेते। हमारे बड़े अक्सर कहते हैं, हैबिट के लिए बार बार टोकते थे। और उनमें से एक कॉमन हैबिट थी नाखून चबाना। जी हाँ, नेल बाइटिंग। बचपन में मम्मी तुरंत बोलती थी, नाखून मत चबाओ, बुरी आदत है। उस वक्त शायद हमें लगता था कि ये सिर्फ मैनर्स की बात है, लेकिन आज साइंस और साइकोलॉजी दोनों इस हैबिट को सीरियसली देखते हैं। हमारे यही एक पुरानी बिलीफ भी कि बार बार नाखून चबाना नर्वसनेस, इनर रेस्टलेसनेस और नेगेटिव थॉट्स का साइन होता है। कुछ लोग तो ये भी मानते थे कि ये हैबिट कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी को वीक दिखाती है। जी हाँ, स्पिरिचुअली देखा जाए तो हमारे एंसेस्टर्स सेल्फ कंट्रोल को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। उनका मानना था कि बार बार बॉडी को अनकॉन्शियस तरीके से डिस्टर्ब करना मन की अशांति को रिफ्लेक्ट करता है, और साइंस भी कुछ सिमिलर ही कहता है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग नेल बाइटिंग एंग्जाइटी हैबिट माना जाता है। यह स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग, बोर्डम, फियर या इमोशनल प्रेशर की वजह से डेवलप हो सकती है। हेल्थ वाइज भी ये हार्मफुल हो सकता है। जर्म्स डायरेक्टली मुंह के अंदर चले जाते हैं, नाखून और स्किन डैमेज हो सकता है, और इससे इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। मतलब हमारे एल्डर्स सिर्फ आदत छोड़ो नहीं बोलते थे, वो इनडायरेक्ट

मेंटल कामनेस, हाइजीन और सेल्फ डिसिप्लिन सिखा रहे थे। तो अगर आप अननोइंगली नाखून चबा रहे हो तो ऑब्जर्व करिए, शायद उंगलियां नहीं माइंड स्ट्रेस रिलीज करने की कोशिश कर रहे हो। आपको अगर माइंड स्ट्रेस रिलीज करना है तो द बेस्ट वे इज आप प्रकृति से जुड़िए। जी हाँ, नेचर। नेचर के पास हर एक क्वेश्चन का आंसर होता है और हर एक प्रॉब्लम का समाधान होता है, क्योंकि नेचर हमें भले ही डायरेक्टली समाधान ना दे लेकिन हमारे दिमाग को शांति जरूर देता है, जिससे हम खुद ब खुद हमारी सवालों का जवाब ढूंढ लेते हैं। तो दोस्तों, चलिए अभी हम सुनते हैं एक खूबसूरत सा ट्रैक जो है सेनोरिटा।

तो आप सुन रहे थे साथिया गाना, जिसे गाया था सोनू निगम ने। तो दोस्तों, मुझे लग रहा है आप सभी बहुत बोर हो रहे होंगे, क्योंकि ये क्या आज जेडी ना पूरे ये ऐसे पुरानी और बुरी आदतों के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत ही बोरिंग है ना। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, आज एक दिन के लिए झेल लो, क्योंकि इसे सुनिए और समझिए। ये आपके लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है। आपको इन सभी आदतों को सुधारना चाहिए। आप एक बार सुनिए और समझिए। अभी तक हमने बात किया था पुरानी आदतों के बारे में, अभी हम बात करेंगे मॉडर्न बैड हैबिट्स, जो आजकल के ज़माने में हैं। जी हाँ, जो बाप दादा और नानी चाची ये सब के नहीं, आजकल के बच्चों के साथ होती है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं ऐसी हैबिट्स के बारे में, जैसे कि बार बार फोन चेक करना। जी हाँ, कभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया तो भी हम चेक कर लेते हैं। हम हमारा सोशल मीडिया खोल के देखते हैं कि किसी का मैसेज आया, या हमने जो मैसेज भेजा क्या उसको उसने देखा या नहीं, उसका अभी तक रिप्लाई नहीं आया, यही सोचते बैठते हैं। और हम बार बार फोन खोलते हैं और मैसेजेस चेक करते हैं। कभी कभी तो फोन हाथ में लेने का रीजन याद भी नहीं रहता। जी हाँ, हम फोन लेते हैं और भूल जाते हैं कि हम फोन क्यों लिए हमने। शुरू में ये सिर्फ हैबिट लगती है, लेकिन धीरे धीरे ये माइंड को कंटिन्यूसली डिस्ट्रैक्ट करता है और रेस्टलेस बनाता है। साइंस के अकॉर्डिंग हर नोटिफिकेशन और स्क्रोलिंग ब्रेन में डोपामाइन रिलीज करता है, यानी एक टेम्पररी प्लेजर फीलिंग, और धीरे धीरे ब्रेन उसी एक्साइटमेंट को एडिक्ट कर लेता है। इसका इफेक्ट सिर्फ स्क्रीन तक लिमिटेड नहीं रहता। जी हाँ, उसका इफेक्ट हमारी आँखें, हमारी स्वास्थ्य और हमारी मेंटल हेल्थ पर भी इफेक्ट करता है। एंड इसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन का वीक हो जाना, हमारी नींद खराब होना, एंग्जाइटी और ओवरथिंकिंग बढ़ जाना, और रियल लाइफ कन्वर्जेशंस में भी होने लगती है प्रॉब्लम्स। सबसे डेंजरस बात यह है कि इंसान फिजिकली प्रेजेंट होता है, लेकिन मेंटली स्क्रीन के अंदर घुसा होता है। जी हाँ दोस्तों, लॉन्ग टर्म में ये हैबिट पेशेंस और अटेंशन स्पैन को भी इफेक्ट करती है। सतर्क हो जाइए अभी से। कई लोग बिना फोन के कुछ मिनट भी नहीं रह सकते। उनको अजीब सी बेचैनी होने लगती है कि मेरा फोन कहाँ है, किसी का मैसेज आया, किसी का कॉल आया। जी हाँ, और लोग फोन को अपने साथ बाथरूम में भी लेके जाते हैं आजकल। हम इसके बारे में फिर से बात करेंगे। ये एक और बुरी आदत है, फोन को बाथरूम में लेके जाना। लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक खतरनाक गाना, बोनी एम का रस्पटीन।

0: तो दोस्तों वेलकम बैक। स्टूडियो में टाइम हो रहा है 1:01 और आप सुन रहे हैं FM रेनबो 101.9। रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन। तो दोस्तों ये रहा आपका फेवरेट सेगमेंट जहां पर आप हमसे जुड़ सकते हैं कॉल्स के थ्रू और मैं पूछूंगा सवाल और आप अपने जवाब बता सकते हैं। तो मैं पहले आपको नंबर्स बता दूं। हमारे फ़ोन लाइंस खुली है और आप हमको कॉल कर सकते हैं 0402323-0030 और 0402323-4821। एक और नंबर भी है 0402970-4715 पर। और अगर आप किसी कारण हमसे जुड़ नहीं सकते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और नंबर है 4023234822 पर। तो दोस्तों आज का सवाल ये है, आप कभी भी किसी किसी किसी इंसान को थैंक यू बोलना चाहते थे किसी वजह के लिए लेकिन आप बोल नहीं पाए, तो आप हमको कॉल करके शेयर कर सकते हैं और अगर वो सुन रहा होता तो वो खुश हो जाएगा, नहीं तो आप सेटिस्फाई हो जाएंगे कि किसी को बताएं आपने। तो जी हाँ दोस्तों, तो चलिए इसके साथ ही हम सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं, 0402323-0030, 0402323-4821 और 2970-4715 पर। एक और बार बोलता हूं, 0402970-4715 पर।
1: मैं कोई नेता या लीडर या सोशल वर्कर नहीं हूं जिसने नाम कमाने के खातिर ये टिकट खरीदे। अगर मुझे मालूम होता कि यहां मेरी खूबियां आप लोगों पर जाहिर की जाएंगी, तालियों से मेरा स्वागत होगा, हार पहनाए जाएंगे, तो मैं शायद कभी ना आता। एक एक भाई अगर दूसरे भाई का पेट भरता है तो अपना फर्ज निभाता है, किसी पर कोई एहसान नहीं करता। मैंने अगर इन यतीम बच्चों के लिए कुछ दिया है तो अपनी बिरादरी को दिया है, अपने भाइयों को दिया है, क्योंकि क्योंकि मैं भी इन लोगों की तरह एक यतीम हूं। जब होश संभाला तो न मां की गोद थी न बाप का साया था, फुटपाथ की गोद थी, भूख और गरीबी का साया था, मैं था, मेरी तन्हाई थी, ठोकरें थी, समाने की धुतकार थी, लोगों की गालियां थी। ऐसे में एक हमदर्द मिला, उसे मेरी हालत पर रहम आया, प्यार से उसने मेरे सर पर हाथ रखा, मैं रो पड़ा।

उसने गीत गाकर मेरे जख्मी दिल पर मरहम लगाया। उस मरहम के सहारे हम आज जिंदा हैं, वरना हम तो कब के मर गए होते। वो गीत मेरे जहन के वादियों में आज भी गूंज रहा है। मैं उसे भूला नहीं। मैं गली या चौराहे पे वो गीत नहीं गाता, नहीं, बल्कि जब कभी भी उस खोए हुए हमदर्द की याद आती है, जब कभी भी जिंदगी से मायूस हो जाता हूं, वो गीत गुनगुना लिया करता हूं।

0: हेलो रेनबो।
1: हेलो हेलो रेनबो,
0: यस मैडम,
1: नमस्ते।
0: आप कैसे हैं? कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं दिलशुख नगर से बात कर रही हूँ। मेरा नाम रितिका है।
0: जी रितिका जी, बोलिए, कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
0: गुड
1: आपका
0: गुड,
1: शो
0: थैंक
1: बहुत
0: यू
1: अच्छा
0: सो
1: चल रहा
0: मच।
1: है।
0: थैंक यू रितिका जी। तो आज आपने सवाल सुना हमारा?
1: हाँ जी, एक बार रिपीट कर देंगे आप?
0: हाँ, आज का सवाल ये है कि आपको कभी लगा कि आपको किसी को थैंक यू बोलना था किसी वजह के लिए, लेकिन आप बोल नहीं पाए, तो वो वजह क्या है और वो कौन है? अगर आप बता सकते हैं।
1: हाँ जी, मुझे ना मैंने 3-4 साल पहले केदारनाथ ट्रैक किया था,
0: ओके।
1: तो वहाँ पे बीच रास्ते में somebody offered to carry my bag। तो मैं आई थिंक मैंने बोल चुका है थैंक यू, बट ऐसे उतरने के बाद ढंग से नहीं बोला है। तो आई
0: जी
1: वुड बी ग्रेटफुल, बिकॉज ट्रैकिंग के टाइम ना बैग वजन होने से पीछे की तरफ खींच रही थी मैं,
0: जी
1: बट
0: जी
1: इट
0: जी
1: वॉज नाइस। अपने ही हैदराबाद से थे तो
0: ओके
1: अच्छा
0: ओके।
1: लगा मुझे।
0: जी, आई होप वो सुने कि आप उनके उन, उन उनको थैंक यू बोल रहे हैं। बहुत स्वीट है। थैंक यू सो मच रितिका जी।
1: And also, I want to thank all my friends for being there for me every time.
0: बहुत ही प्यारी बात कही है आपने रितिका जी।
1: Thank you, जी. Have a nice day.
0: वेलकम एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जी दोस्तों, ये थी रितिका जी, और ये थैंक यू बोलना चाहती थी उस शख्स को जिन्होंने इनसे इन्हें मदद की है। हम जुड़ते हैं अगले कॉलर से। हेलो रेनबो। हेलो, लगता है कॉल कट हो चुका है। आप फिर से कोशिश कीजिए प्लीज़। तो जी हाँ, आप किसी को थैंक यू बोलना चाहते हैं और उन्हें नहीं बोल पाए, तो आप हमें वजह बता सकते हैं कि किस बात के लिए आप उन्हें थैंक यू बोलना चाहते हैं और किस को थैंक यू बोलना चाहते हैं। तो हम जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। हेलो रेनबो।
2: हेलो, गुड आफ्टरनून आदाब जेडी जी।
0: थैंक यू सो मच सर, गुड आफ्टरनून। आप कैसे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। मैं शेर खान बोल रहा हूँ, तालाब कट्टा अमन नगर से। जी,
0: शेर खान जी, बोलिए।
2: और सभी भाई बहनों को, दोस्तों को, आपको मेरा प्यार भरा सलाम आदाब।
0: बहुत
2: अल्लाह
0: शुक्रिया
2: आप
0: शेर
2: सभी
0: खान
2: को
0: जी,
2: हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और सेहतमंद रखे।
0: बहुत बहुत शुक्रिया शेर खान जी।
2: जी जी
0: तो आपने हमारा सवाल सुना?
2: हाँ जी, सवाल सुना, लेकिन मुझे ऐसी कोई भी बात याद नहीं आ रही, क्योंकि मेरी ये आदत है जेटी जी,
0: जी
2: मैं आपको बता दूं कि मैं हर हाल में पहले तो अल्लाह को थैंक यू बोलता हूँ, अल्लाह
0: जी
2: को, अपने
0: जी
2: गॉड को
0: जी
2: शुक्र अदा करता हूँ
0: ये बात
2: हमेशा।
0: बहुत करेक्ट है
2: और ये आदत बना लिया है मैंने, और ये करना जरूरी है। और
0: जी।
2: जब हम किसी इंसान से मिलते हैं या कोई हमारी छोटी सी हेल्प, बड़ी हेल्प, कुछ भी जो भी करता है, या हमको अच्छी दो मीठे प्यार के बोल भी बोल देता है ना,
0: जी
2: तो
0: जी
2: मैं हमेशा उसको जजाकअल्लाह और शुक्रिया बोलता रहता हूँ, थैंक यू बोलता रहता हूँ
0: बहुत
2: हमेशा।
0: स्वीट है शेरखान जी, बहुत
2: यानी
0: स्वीट।
2: मैंने कभी याद भी नहीं है कि मेरे लिए किसी ने ऐसा किया और मैं उसको थैंक यू भी नहीं बोल सका, शुक्रिया भी नहीं बोल सका। तो मैं हमेशा जजाकअल्लाह शुक्रिया, जजाकअल्लाह शुक्रिया, ये अपने अंदर ये जो बात है हमेशा रखता हूँ। मतलब मुझे
0: जी
2: याद नहीं आता कि मैं ऐसा कभी मिस हुआ या किसी को बोल नहीं सका। मैं
0: जी
2: हमेशा दिल से बोलता हूँ, या दिल से बोलने की हमेशा मेरी आदत है ये, क्योंकि
0: जी जी बहुत स्वीट है शेर
2: मैं
0: खान जी।
2: ब्लाइंड हूँ। और मेरी बहुत जगह पे मेरे को बहुत बहुत सारे लोगों ने, मतलब दोस्तों ने, कोई भी हो, अपने से हेल्प की है, छोटी बड़ी
0: हाँ
2: कोई
0: जी
2: भी। और मेरे लिए प्यार से दो बोल बोल देना, यही मेरे लिए बहुत बड़ी, मतलब मेरी प्रॉपर्टी है, धन दौलत है। कोई मुझे प्यार से पेश आ जाए, मैं भी सभी से वही प्यार से और दिल से पेश आना चाहता हूँ बस हमेशा।
0: जी जी ज़रूर ज़रूर। बहुत अच्छा शेरखान जी, आपसे बात करके
2: और
0: बहुत अच्छा
2: जेडी
0: लगा।
2: साहब, एक गाने की रिक्वेस्ट है,
0: हाँ
2: प्लीज
0: जी
2: आप
0: ज़रूर बोलिए
2: पूरा
0: ना।
2: कर
0: हम
2: देंगे ढूंढ के, मुझे उम्मीद है।
0: जी बताइए ना।
2: फिल्म का नाम है दो कलियां,
0: हाँ जी
2: मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाज। गाने के बोले, तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई।
0: डेफिनेटली सर, हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, अगर मिला तो ज़रूर बजा
2: हाँ,
0: देंगे।
2: अगर ये ना हो तो फिर दूसरी पुरानी फिल्म है उपहार, उसमें लता मंगेशकर की आवाज में है, मैंने माँ को देखा है, माँ का प्यार नहीं देखा।
0: जी ज़रूर हम बजा
2: ये
0: देंगे।
2: दोनों में से आप एक जरूर ढूंढेंगे। आप ढूंढे, प्ले करे तो भी थैंक यू, नहीं करे तो भी थैंक यू आपको।
0: थैंक यू सो मच शेरखान जी, आप बहुत
2: ओके,
0: स्वीट है।
2: मुमताज बाजी को भी सलाम है हमारा,
0: जी
2: अल्लाह
0: जी
2: हाफिज।
0: जी जी थैंक यू सो मच सर। तो ये थे शेर खान जी, और ये थैंक यू कहते हैं अपने खुदा से, जो कि बहुत अच्छी आदत है। तो चलिए हम जुड़

0: हैं एक और कॉलर से। हेलो रेनबो।
1: हेलो जी
0: हेलो, हाँ जी सर, कैसे हैं आप?
1: सर, पहले आपको थैंक यू बोलती हूँ। आप मेरा फोन रिसीव करें, आपको
0: जी सर।
1: पहले आप मेरा फोन रिसीव करें, फोन लगा, मैं आपको पहले थैंक यू बोलती हूँ
0: वेलकम सर। सर, आपका नाम और आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: सर। मेरा नाम सोनू है, एग्जाम्पल बस स्टैंड में मेरा भंडेला का जॉब मिला नंबर 27 पर, वहाँ से बात कर रहा हूँ।
0: जी जी सर, बताइए सोनू सर। तो आज आपने
1: हाँ
0: हमारा
1: सर,
0: सवाल
1: आज
0: सुना?
1: मेरा को हाँ सर सब कुछ सुने हैं,
0: जी सर
1: और आज बहुत ज्यादा बात है, आज किसी के साथ तो सब कुछ है, दोस्त
0: जी
1: है और लाइफ पार्टनर है, अगर उन्हें दूर में टिफिन करे चार है, मगर नजदीक नहीं आए। थैंक
0: जी सर।
1: यू बोलना था जाके, मगर ऐसे तो आए गए बोले नहीं आए, मगर भगवान से थैंक यू बोले जो बहुत दिन का बाद उनको देखे मैं, और
0: जी
1: बहुत
0: जी सर
1: सपना है, और आपको फोन कर आप फोन करें, आपको थैंक यू बोलो,
0: जी सर
1: आज तो सबको थैंक यू बोलो, थैंक यू
0: बहुत स्वीट
1: सर,
0: सर।
1: बहुत बहुत
0: जी सर, बहुत स्वीट है सर।
1: सर।
0: थैंक यू सो मच सर
1: हेलो
0: हमारे।
1: सर, अरे
0: जी सर
1: एक आपका पसंद एक अच्छा गाना गाना जो मेरे को सपना लगता है, मालूम है मैं कौन हूँ, मालूम है आपसे कौन है मेरे को।
0: जी सर,
1: बहुत
0: थैंक यू सो मच सर। तो मुझे ये सर का बहुत अच्छा लगा कि ये मुझे थैंक यू बोल रहे हैं कॉल उठाने के लिए। बहुत स्वीट है। हम जुड़ते हैं एक और कॉलर से, उसके बाद हम चलते हैं हमारी म्यूजिकल जर्नी की तरफ। हेलो रेनबो।
1: गुड आफ्टरनून सर,
0: गुड आफ्टरनून सर, बोलिए सर, कैसे हैं आप और कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: एकदम एकदम बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं सर?
0: बहुत मस्त सर, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। सर, आपका नाम?
1: मेरा नाम नरसिम्हा रेड्डी सर,
0: नरसिम्हा
1: प्रेमावती
0: गारू,
1: सर,
0: एलान रो
1: थाना 52 सर,
0: सर, चोपेन सर, मा प्रश्न विन्नारा मेरी रोजू
1: विन्नान विन्नान सर,
0: చెప్పండి సార్, మీరు ఎవరిని థ్యాంక్ యూ చెప్పాలనుకుంటున్నారు? ఇంకా దేని దేనికోసం థ్యాంక్ యూ చెప్పాలనుకుంటున్నారు?
1: థ్యాంక్ యూ చెప్పలేను కానీ ఎప్పటికీ వాళ్ళంతా ఫ్రెండ్షిప్ చేయడం మొదలుపెట్టిన సార్, దానికి అంతకంటే మీకు థ్యాంక్స్ ఏముంటుంది సార్ ఇక, అంటే థ్యాంక్స్ అంటే ఆ పరిస్థితిలో చెప్పలేకపోయినా,
0: ఓకే
1: దాని తర్వాత వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళేసి థ్యాంక్ అక్కడ చెప్పేసి వాళ్ళతో కలిసి వాళ్ళ ఇంటికి మా మేము రావడం, మేము అక్కడ పోవడం జరుగుతుంది. ఇప్పటి దగ్గర 32 ఇయర్స్ అవుతుంది సార్,
0: ఓకే ఓకే
1: ఇక అడిగే
0: అయితే
1: థ్యాంక్స్ మధ్యలో థ్యాంక్స్ ఏం లేదు, ఇక అంతే ఫ్రెండ్షిప్ అయిపోయింది అది, ఇక
0: ఎస్ సార్
1: ఏ ఏ
0: ఫ్రెండ్షిప్ లో
1: సంకటం
0: థ్యాంక్ యూ
1: అడిగినా
0: సారీ
1: కూడా
0: ఎక్కడ సార్
1: సార్
0: ఫ్రెండ్షిప్ లో థ్యాంక్ యూ సారీ నడవ
1: ఉండదు
0: ఒకటి
1: కదా,
0: సార్
1: ఇక అట్లా అయిపోయింది అనమాట అది, ఇక
0: నైస్ సార్ నైస్,
1: ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ.
0: థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ షేరింగ్ సార్. तो जी हाँ दोस्तों, तो इतने सारे कॉल्स आ रहे हैं और सभी लोग किसी ना किसी को थैंक यू बोलना चाह रहे हैं, और कुछ है जो खुदा को थैंक यू बोलना चाह रहे हैं, और खुद मैं चाहता हूँ कि कभी कभी आप खुद को भी थैंक यू बोलिए, क्योंकि आप खुद का ख्याल रख रहे हैं. तो जी हाँ दोस्तों, चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं म्यूज़िकल जर्नी की तरफ.

0: చెప్పండి మంగ గారు, మీరు మాకు మా క్వశ్చన్ విన్నారా?
1: విన్నాను. ముందుగా మనం చెప్పేది
0: ఎస్ సార్.
1: దేవుడికి, పేరెంట్స్కి ముందండి.
0: అవునండి,
1: మనం పేరెంట్స్ని లేకుండా లేము కదా.
0: ఎస్ ఎస్,
1: మనం మేము ముఖ్యంగా పేరెంట్స్ అయినాక కూడా మనం పేరెంట్స్ని మర్చిపోకూడదు. ఈరోజు ఇంటర్నేషనల్ పేరెంట్స్ డే, వాళ్ళని తలుచుకోవాలి.
0: అవునండి, అవును. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం.
1: మనం ఎన్నో సార్లు బై మిస్టేక్ మర్చిపోయి ఉండొచ్చు, ఎవరికన్నా చెప్పలేకపోయి ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు పేరెంట్స్ లేరు, లేకపోయినా మనం ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసి వాళ్ళ ద్వారా మనం ఎన్నో తీసుకుని కూడా చెప్పలేకపోయి ఉండొచ్చు. సో కాబట్టి మన ఎఫ్ఎం రెయిన్బోకి, మన ఆకాశవాణికి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాం. ముఖ్యంగా ఇంత మంచి కాలర్ షో పెట్టి మాకు ఈ అవకాశం ఇస్తున్నారు కదా.
0: థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్.
1: థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హ్యాపీ ఇంటర్నేషనల్ పేరెంట్స్ డే.
0: థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. మీ మీ ఫీలింగ్స్ షేర్ చేసినందుకు. తో జీ హాన్ దోస్తో, కితనా కితనా ప్యారా బోల్తే హై లోగ్. అండ్ ఏ థ్యాంక్ యూ బోల్నా చాతే హై హమ్ అప్నే పేరెంట్స్ కో, జినోనే బహుత్ కుచ్ హమారే లియే కియా హై ఔర్ హమ్ కభీ కభీ థ్యాంక్ యూ బోల్నా భూల్ జాతే హై ఉన్హే. తో జీ హాన్ చలియే హమ్ జుడ్తే హై హమారే నయే కాలర్ కే సాథ. హలో రెయిన్బో.
2: ఆనే సర్.
0: Yes sir, yes sir, बोलिए. आपका नाम और कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
2: मेरा नाम कीर्ति राजकुमार, आदर्श नगर निजामाबाद से बात कर रहा हूँ सर.
0: बोलिए सर, आप कैसे हैं?
2: हम बस मजे में है सर. आप मजे में है क्या?
0: जी सर, बहुत अच्छा है. थैंक यू सो मच सर.
2: ओके सर.
0: तो सर आपने सुना हमारा सवाल?
2: हाँ सुना सर. मैंने गॉड को, भगवान को प्रणाम करता हूँ सर. रात में सोते टाइम पे मैं प्रणाम करके 11 बजे सो जाता हूँ सर. सुबह में उन सहीद मन पूरा अच्छा सहज से मेरे को उठा के वॉकिंग को भेजते साहब.
0: जी सर.
2: जाते टाइम पे मैं जमीन को सलाम करके मैं वॉकिंग को जाता हूँ सर.
0: अरे वाह सर. वही
2: भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ सर.
0: बहुत अच्छा हैबिट है सर आपका.
2: वो हैबिट है सर, वो मेरे को हर दिन हर रात में सोने के बाद और उठने के बाद उसका पहला प्रार्थना करके पूरा बाद में बात करता हूँ सर.
0: जी सर जी, बहुत अच्छी हैबिट है सर ये वाकई में.
2: वही चाहे ना सर, गॉड गिफ्ट है वो. अपने को उठाने वाला होना चाहे, बचाने वाला होना चाहे, सुलाने वाला होना चाहे.
0: जी सर जी सर, बहुत सच कहा आपने. थैंक यू सो मच सर हमें हमारे साथ शेयर करने के लिए ऐसी बातें. तो जी हाँ, बहुत से लोग हैं जो भगवान को थैंक यू बोलना चाहते हैं, खुदा को थैंक यू बोलना चाहते हैं. और दोस्तों हमारे पास बहुत से लोग हैं जो व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर रहे हैं. सरवर अली जी ने एक वीडियो भेजा है जहाँ पर उन्होंने अपनी पुरानी रेडियो की वीडियो भेजते हैं और वो बता रहे हैं कि वो हमें सुन रहे हैं. थैंक यू सो मच सरवर अली जी. और अशोक जी कहते हैं, कागज़ पे हमने ज़िंदगी लिख दी, कागज़ पे हमने ज़िंदगी लिख दी, आँखों से सींच कर अपनी हर खुशी लिख दी. दर्द जब हम नहीं उतारा, दर्द जब हमने उतारा लफ्ज़ों में, ज़माने ने कहा वाह क्या गज़ल लिख दी. वाह सर वाह. थैंक यू सो मच अशोक जी, इतना इतने खूबसूरत लाइंस भेजने के लिए. और ये है आर्निका चंदू हैदराबाद से, और ये लिखते हैं, अन्ना नमस्ते. नमस्ते अन्ना, मीक गुड़ा नमस्ते. टुडे इज़ इंटरनेशनल मिल्क डे, आई लाइक सो मच. जी हाँ, ये कहते हैं कि इन्हें इन्हें दूध बहुत पसंद है और पसंद होनी भी चाहिए, बहुत इतनी हेल्दी जो है वो. एंड ये कहते हैं, आज इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे भी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे वर्ल्ड पेरेंट डे, एंड आई वॉन्ट टू टेल थैंक्स टू माई पेरेंट्स. जी आर्निका जी, आपके पेरेंट्स बहुत खुश होंगे कि आप उनके थैंक यू बोल रहे हैं. एंड थैंक यू सो मच हमें मैसेज करने के लिए. और दोस्तों आप भी हमको मैसेज कर सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप का नंबर है 4023234822 पर. और हम जुड़ते हैं हमारे नए कॉलर के साथ, देखते हैं कौन है लाइन पे. मेरे ख्याल से कॉल कट हो चुका है. जी कोई बात नहीं, आप प्लीज़ कृपया फिर से कोशिश कीजिए ताकि हम आपका कॉल ले सकें. तो दोस्तों चलिए हम बजाते हैं एक फरमाइश वाला सॉन्ग जो कि है लता जी का.

0: वेलकम बैक दोस्तों। तो बहुत सी कॉल्स आ रही हैं, तो लेते हैं हम हमारा अगला कॉलर को। हेलो रेनबो।
1: हेलो रेनबो,
0: हेलो मैडम, कैसे हैं आप? कहाँ से बात कर रहे
1: मैं
0: हैं?
1: अच्छी हूँ। आप कैसे हैं?
0: मैं ठीक हूँ। आपका नाम?
1: मेरा नाम संजना है।
0: संजना जी, बताइए आप कैसे और आपने हमारा सवाल सुना?

चतुर नार करके सिंगार एक चतुर नार बड़ी होशियार मेरे मन के द्वार ये घुसत जात अपने ही जाल में फंसत जात हम मरत

ये आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 MHz पर। इस रेडियो सी घड़ी में 9:30 हो चुके हैं। अब वक्त हुआ जाता है उर्दू प्रोग्राम नए रंग का।

हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ बहुत सी ज़ुबानें बोली और समझी जाती हैं। इन ज़ुबानों में ज़्यादातर ज़ुबानें ऐसी हैं जिनकी हैसियत इलाकाई है, जिनका दायरेकार बहुत हद तक सिमटा हुआ है। मगर उर्दू हिंदुस्तान की उन चंद ज़बानों में से एक है जिसके शुमाल से जुनूब तक और मग़रिब से मशरक़ तक मुख्तलिफ इलाक़ों में फैली हुई है। उर्दू अपनी सहर आफरीनी और कशिश के सबब अवाम की ज़ुबान पर चढ़ती हुई उर्दू ज़ुबान है। उर्दू ज़ुबान सिर्फ एक कल्चर ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानी मुश्तरका तहजीब की अलामत, गंगा जमनी तहजीब व माशरत की अलमबरदार और इत्तेहाद व मसावात की तर्जुमान है। इसका दामन इतना वसी व अरीज है कि इसमें न सिर्फ हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू है बल्कि बरसग़ीर और वस्त एशियाई तहजीब व सकाफत की बू इसमें बदर्जे उत्तम मौजूद है। उर्दू ज़ुबान का वजूद ही मुश्तरका तहजीब व सकाफत की देन है। यह खालिस बसित आर्यायी सिलसिले की हिंदुस्तानी ज़बान है जिसमें हिंदुस्तानियत के अनासिर जा बजा देखे जा सकते हैं। आम बोलचाल से लेकर अदब और शायरी तक हर जगह हिंदुस्तानी अनासिर मौजूद हैं। इसके ज़मीर में ये बात शामिल है कि वो सबको साथ लेकर चलती है। मुसलमानों के अलावा हिंदू, सिख, ईसाई और दूसरे मजाहब के लोग भी बहुत सरगर्म रहे हैं। मसनवी पदम राव से लेकर आज तक बहुत सी किताबें गैर मुस्लिमों के कलम से लिखी हुई हैं जो शाहकार का दर्जा रखती हैं। उर्दू अदब की जितनी भी असनाफ हैं इन सब में हिंदुस्तान की इल्मी व अदबी, सियासी व समाजी, तहजीबी व तमद्दनी, कौमी और हमवतनी जैसे अनासिर कसरत से पाए जाते हैं। इसमें शक नहीं कि शायरी इंसानी जज्बात व एहसासात की आईनादार है और अपने माहौल से असरअंदाज होकर इंसानी अकदार की अक्कासी करती है जिसने मुश्तरका तहजीब की अलामत को उजागर करने में अहम रोल अदा किया है। ये बात बिल्कुल वाज़े है कि शायरी में नज्म ने सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, भाईचारगी, अख़वत, हमदर्दी, मेलजोल और अपनेपन के एहसास को नुमाया करने में खास किरदार अदा किया है। उर्दू नज्म हमेशा अपने असरी माहौल से मुतासिर रही। इसने हर अहद की ज़रूरतों और तकाज़ों को पूरा किया है। इसने हिंदुस्तान के सियासी, तहजीबी और सकाफती तकाज़े को भी बहसन खूबी अदा किया है। चुनांचे हम देखते हैं कि उर्दू नज़मों में इत्तेहाद, मसावात का पयाम, वतन परस्ती के जौहर, वतन परस्ती की शान में तराने, हुब्बुल वतनी के जज्बात से सरशार नज़में कसरत से मिलती हैं। ऐसे बहुत से शोरा हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की अजमत और रफत में ऐसे दिलकश और जज्बात आमेज तराने और गाए जिनमें अपने मुल्क से वालेहाना मोहब्बत व अकीदत और वतन परस्ती के जज्बात उभरते हैं। गायत्री मंत्र को उर्दू के बेशतर नज़म निगारों ने अपने नज़मों में पेश किया है। गायत्री मंत्र वैदों का एक ख़ास मंत्र है जिसकी अहमियत तकरीबन ओम के बराबर है। गायत्री एक छंद भी है जो ऋग्वेद के साथ मशहूर छंदों में एक है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंत्र के पढ़ने से खुदा का इरफान हासिल होता है। इसकी बहुत सी फजीलतें बयान की गई हैं। गायत्री मंत्र को नज़्म करने वाले अर्श मलसियानी उर्दू के मारूफ शायर हैं। इन्होंने बड़ी तादाद में नज़में कही हैं जो मुख्तलिफ

0: ये आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 MHz पर। अभी आपसे बात कर रहे थे, हरफ़ ताबिंदा तहरीर और पेशकश थी एम ए हाई की। सामिन समाप्त कीजिए, अगला प्रोग्राम बिसात गज़ल, पेशकश है वली मोहम्मद जाहिद की।
1: लीजिए, पेश है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर एक ताज़ा गज़ल, समाप्त फरमाइए।

है, इल्म की किरणें फूट रही हैं आहिस्ता आहिस्ता अब, इल्म की किरणें फूट रही हैं आहिस्ता आहिस्ता अब।

है। पाल पोस के पढ़ा लिखा के जिसकी अमानत थी दे दी, पाल पोस के पढ़ा लिखा के

0: एक कदम स्वच्छता की तरफ जब बढ़ा, एक कदम स्वच्छता की तरफ जब बढ़ा, फख्र से सर हमारा ये ऊंचा हुआ, फख्र से सर हमारा ये ऊंचा हुआ, एक कदम स्वच्छता की तरफ जब बढ़ा, फख्र से सर हमारा ये ऊंचा हुआ। जब बनाया सरे राह इज्जत का घर, जब बनाया सरे राह इज्जत का घर, स्वच्छ भारत का नारा हमें सच लगा, स्वच्छ भारत का नारा हमें सच लगा, एक कदम स्वच्छता की तरफ जब बढ़ा, एक कदम स्वच्छता की तरफ जब बढ़ा, फख्र से सर हमारा ये ऊंचा हुआ।
1: ये गजल पेश है। बुत को तलाश कर न तू बुतगर तलाश कर, मतलब समाज फरमाए कि बुत को तलाश कर न तू बुतगर तलाश कर, होने को सजदा रेज बस एक दर तलाश कर, होने को सजदा रेज बस एक दर तलाश कर, और जाहिर को उसके देख न तू जर तलाश कर, जाहिर को उसके देख न तू जर तलाश कर, इंसान में खुलूस का जौहर तलाश कर, इंसान में खुलूस का जौहर तलाश कर, और माना कि अब बहार का मौसम नहीं रहा, माना कि अब बहार का मौसम नहीं रहा, दौरे खिजा में शाख तनावर तलाश कर, दौरे खिजा में शाख तनावर तलाश कर, और क्यों इतने हाँ तोहीन जाके देश की मत कर विदेश में, अपने वतन में अपना मुकद्दर तलाश कर, अपने वतन में अपना मुकद्दर तलाश कर, और दर दर भटकते फिरने से कुछ फायदा नहीं, दर दर भटकते फिरने से कुछ फायदा नहीं, मिलता जहां से सबको है वो दर तलाश कर, मिलता जहां से सबको है वो दर तलाश कर, और कायम हो अमन देश में उल्फत हो बाहमी, कायम हो अमन देश में उल्फत हो बाहमी, हर सू खुलूस ओ प्यार का मंजर तलाश कर, हर सू खुलूस ओ प्यार का मंजर तलाश कर, और शेर बतौर खास समात फरमाए कि ऊंची इमारतों पे न तेरी नजर रहे, ऊंची इमारतों पे न तेरी नजर रहे, रिश्ता करे तो अपने बराबर तलाश कर, रिश्ता करे तो अपने बराबर तलाश कर, और पहलू को मत टटोल किसी की बुराई के, पहलू को मत टटोल किसी की बुराई के, अच्छाइयों का सब में तू जौहर तलाश कर।

अच्छाइयों का सब में तू जौहर तलाश कर, और हक की बका के वास्ते तन से जुदा हुआ। हक की बका के वास्ते तन से जुदा हुआ, शाने पे अपने आज तू वो सर तलाश कर, शाने पे अपने आज तू वो सर तलाश कर, और अशआर तेरे कौम को रख दें झिंझोड़ कर, अशआर तेरे कौम को रख दें झिंझोड़ कर, इकबाल सा तू खुद में सुखनवर तलाश कर, इकबाल सा तू खुद में सुखनवर तलाश कर, दर दर भटकते फिरने से कुछ फायदा नहीं, दर दर भटकते फिरने से कुछ फायदा नहीं, मिलता जहां से सबको है वो दर तलाश कर। और फरमा दिया नबी ने मैं हूं आखिरी नबी, आखिरी शेर है, फरमा दिया नबी ने मैं हूं आखिरी नबी, बदबख्त अब न कोई पैगंबर तलाश कर, बदबख्त अब न कोई पैगंबर तलाश कर। और मख्ता समात फरमाए कि खिदमत करे जो मजहबी तफरीक के बगैर, खिदमत करे जो मजहबी तफरीक के बगैर, जाहिद तो ऐसा देश का रहबर तलाश कर, जाहिद तो ऐसा देश का रहबर तलाश कर, बुत को तलाश कर न तू बुतगर तलाश कर, होने को सजदा रेज बस एक दर तलाश कर। एक और गजल का मतलब समाप्त फरमाया।

0: एक और गजल का मतलब समाप्त फरमाए।
1: ये हकीकत है जमाने से निहां रखता हूँ मैं, ये हकीकत है जमाने से निहां रखता हूँ मैं।

आपसे उल्फत यकीनन बेकरार रखता हूँ मैं, ये यकीन होने पर भी तूफान है मेरे सामने, ये यकीन होने पर भी तूफान है मेरे सामने, अपनी मंजिल की तरफ कश्ती रवा रखता हूँ मैं, अपनी मंजिल की तरफ कश्ती रवा रखता हूँ मैं।

रखता हूँ मैं अपने माजी की तवील एक दास्तां रखता हूँ मैं। सर पे मैं रखता नहीं हूँ रास्ते की खाक को, सर पे मैं रखता नहीं हूँ रास्ते की खाक को, जिसको रखना है जहाँ उसको वहाँ रखता हूँ मैं, जिसको रखना है जहाँ उसको वहाँ रखता हूँ मैं। और शेर बतौर खास समाप्त फरमाए।

कहाँ, यूं छुपा कर दोस्तों की तलखियां रखता हूं मैं, यूं छुपा कर दोस्तों की तलखियां रखता हूं मैं। जो भी आया दे दिया सब कुछ खुदा की राह में, जो भी आया दे दिया सब कुछ खुदा की राह में, वास्ते कल के बचा कर ही कहाँ रखता हूँ मैं, वास्ते कल के बचा कर ही कहाँ रखता हूँ मैं। और आखिरी शेर समाप्त फरमा,

0: अज़्म ए ज़ाहिद हमेशा ही जवां रखता हूँ मैं, अज़्म ए ज़ाहिद हमेशा ही जवां रखता हूँ मैं, ये हकीकत है ज़माने से निहां रखता हूँ मैं।
1: यह आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। अभी आप समाप्त कर रहे थे बिसात गज़ल सिलसिले के तहत चंद गज़लें। उनवान था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पेश कर रहे थे वली मोहम्मद जाहिद। लीजिए समाप्त कीजिए फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम गीत सुरेले गाते जा, और साथ में हम बात करेंगे वालिद की अहमियत के मुतालिक चंद बातें। लीजिए समाप्त कीजिए ये नगमा।

यह आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 MHz पर। अभी आपसे बात कर रहे हैं फिल्मी नगमों पर। मैं अपने प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जा और साथ में हम बात कर रहे थे वालिद के मुतालिक चंद बातें। सामाइन, वालिद एक अजीम नेमत और सायदार दरख्त की मानिंद है जो खुद धूप में जलकर अपने बच्चों को छांव फराहम करते हैं। दुनिया में माँ के प्यार पर बहुत कुछ लिखा गया, लेकिन वालिद की कुर्बानियों और मोहब्बत का तذکرہ अक्सर खामोश रह जाता है। लीजिए समाप्त कीजिए ये नगमा मोहम्मद अजीज़ और अलका याग्निक की आवाज़ों में।

मजबूत सुतून है जिस पर पूरे घर का निज़ाम कायम होता है। वो ना सिर्फ घर की माशी ज़रूरियात को पूरा करते हैं बल्कि बच्चों की तरबियत, तालीम और अखलाकी नशोनुमा में अहम तरीन किरदार अदा करते हैं। एक बच्चे की ज़िंदगी में वालिद का वजूद तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करता है। लीजिए समाप्त कीजिए यह नगमा।

यह आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 MHz पर। इस रेडियो से घड़ी में 10:18 हो रहे हैं और आपसे बात कर रहे हैं फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जा। और साथ में हम बात कर रहे थे वालिद के मुतालिक चंद अहम बातें। समय इस्लाम और तमाम मज़ाहब में वालिद को बहुत ऊंचा मुकाम दिया गया है। कुरान में वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की सख्त ताकीद की गई है। रसूल खुदा का फरमान है, वालिद की रज़ा में कुदरत की रज़ा है और वालिद की नाराज़गी में कुदरत की नाराज़गी है। इससे मालूम होता है कि वालिद की फरमाबरदारी और इनका एहतराम किस तरह ज़रूरी है। लीजिए समाप्त कीजिए ये नगमा मोहम्मद अजीज़ और साथियों की आवाज़ में।

सामिन, अभी आपसे बात कर रहे थे ये नगमा मोहम्मद अजीज़ और साथियों की आवाज़ में। ये आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में 10:24 हो चुके हैं और आप समाप्त कर रहे थे फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जा। और साथ में हम बात कर रहे हैं वालिद के मुतालिक चंद अहम बातें। सामईन, वालिद घर का सरबरा होता है और इसकी इज्जत करना हर बच्चे का अव्वलीन फ़र्ज़ है। वो अपनी पूरी ज़िंदगी बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल की तामीर में गुजार देता है। बज़ाहिर वालिद सख्त मिजाज या संजीदा नज़र आ सकते हैं, लेकिन इनके इस सख्त रवैये के पीछे बच्चों की बेपनाह मोहब्बत और फिक्र छुपी होती है। लीजिए, समाप्त कीजिए ये नगमा।

यह आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 MHz पर। स्टूडियो से घड़ी में 10:31 हो चुके हैं। अभी आप समाप्त कर रहे हैं फिल्मी नामों पर मबनी प्रोग्राम गीत सुरेले का तेजा, और साथ में हम बात कर रहे हैं वालिद के मुताबिक चंद बातें। सामाइन, वालिद बाहर की दुनिया की तमाम तर सख्तियों और परेशानियों को अपने सीने पर झेलते हैं ताकि इनके बच्चे पुरसुकून जिंदगी गुजार सके। माँ अगर मोहब्बत का समंदर है तो वालिद तहफ़्फ़ुज़ का वो खिला है जो बच्चों को ज़माने की सर्द व गर्म हवाओं से बचाता है। वालिद की मोहब्बत में कोई दिखावा नहीं होता, खामोशी से अपने फ़राइज़ सरंजाम देते रहते हैं। समय न आगे बढ़ने से पहले समाप्त कीजिए

यह आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 MHz पर। इस रेडियो सीढ़ी में 10:38 हो चुके हैं। समय ना आप समाप्त कर रहे हैं फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम गीत सुरीले का तेजा, और साथ में हम बात कर रहे हैं वालिद के अहमियत के मुतालिक चंद बातें। सामिन, एक वालिद अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को कुर्बान कर देता है। वो रात दिन सख्त मेहनत और मजदूरी करता है ताकि बच्चों को बेहतरीन तालीम दिलवा सके और इनकी जायज़ ख्वाहिश को पूरा कर सके। अक्सर देखा गया है कि वालिद अपने लिए नए कपड़े या जूते नहीं खरीदता, लेकिन बच्चों की ज़रूरत की हर चीज़ वक्त पर लाकर देता है। वालिद के मुतालिक और चंद बातें यूं ही बात करते रहेंगे। उससे पहले समाप्त कीजिए यह नगमा

यह आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 MHz पर। स्टूडियोज की घड़ी में 10:44 हो चुके हैं। आप समाप्त कर रहे हैं फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जा, और साथ में हम बात कर रहे थे वालिद के मुतालिक चंद अहम बातें। सामईन, वालिद जिंदगी का वाहिद मकसद अपने बच्चों को माशरे का एक कामयाब और मुअज़्ज़ज़ शहरी बनता हुआ देखना चाहता है। वो खुद पसमानदगी में रहकर अपने बच्चों को बुलंदियों पर भेजता है। वालिद बच्चे के पहले उस्ताद और रोल मॉडल होते हैं। बच्चे अपने वालिद को देखकर जिंदगी के उसूल समझते हैं। एक वालिद अपने बच्चों को मेहनत, ईमानदारी, नज्म जब्त और बहादुरी का दर्स देता है। लीजिए समाप्त कीजिए ये नगमा।

सामईन ये आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। सामईन हम समाप्त कर रहे हैं चंद फिल्मी नगमे प्रोग्राम गीत सुरेले गाते जा के तहत, और साथ में हम बात कर रहे थे वालिद के मुताबिक चंद बातें। सामईन जब बच्चा दुनिया के उसूलों से नावाकिफ होता है तो वालिद इसका हाथ पकड़कर इसे सही और गलत का फ़र्क सिखाता है। वो बच्चों को ज़िंदगी के चैलेंजेस और मुश्किलात का सामना करना सिखाते हैं ताकि वो बड़े होकर किसी भी मैदान में शिकस्त ना खाए। जिस तरह वालिद अपने बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर देते हैं, इसी तरह बच्चों पर भी वालिद के बहुत से हुकूक आयद होते हैं। हमारा फ़र्ज़ है कि हम इनका एहतराम करें, इनकी बातों को गौर से नहीं और गौर से सुने, और इनकी नाफरमानी से बचें। सामने लीजिए, समाप्त कीजिए ये नगमा।

सामाइन वालिद वो साया है जो धूप में ठंडक बन जाता है। वालिद वो साया है जो धूप में ठंडक बन जाता है। अपनी ख्वाहिशों को भुलाकर औलाद की खुशियों में मुस्कुराता है। वो खामोश रहकर भी हजार दुआएं देता है। वो खामोश रहकर भी हजार दुआएं देता है। हर मुश्किल रास्ते पर हौसला बनकर साथ चलता है। इसके हाथों की मेहनत घर को रोशनी देती है। इसके हाथों की मेहनत घर को रोशनी देती है। इसकी मोहब्बत जिंदगी को मजबूती और खुशी देती है।

मैं वालिद एक नेमत है, एक अनमोल खजाना है। वालिद एक नेमत है, एक अनमोल खजाना है। इसकी इज्जत और मोहब्बत ही हमारा सबसे बड़ा सरमाया है, हमारा सबसे बड़ा सरमाया है। सामईन, अभी आप समाप्त कर रहे थे फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जा, और साथ में हम बात कर रहे थे वालिद के मुतालिक चंद अहम बातें। सामईन, कल उर्दू प्रोग्राम के अंदर आप समाप्त कर सकेंगे हर्फ ताबिंदा, तहरीर और पेशकश होगी एम ए हाय की, बेदारी कायनात सिलसिले के तहत तकरीर, उनवान होगा जलजला सुनामी कैसे और क्यों आते हैं, और गीत सुरीले गाते जा के तहत आप समाप्त कर सकेंगे चंद फिल्मी नगमे, और कल का प्रोग्राम पयामे शब से इख्तिताम को पहुंचेगा। सामईन, लीजिए समाप्त कीजिए पयाम शब, तहरीर और पेशकश होगी नदीम अख्तर जैदी की।

यह आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 MHz पर। स्टूडियो सी घड़ी में रात के 11 बजने ही वाले हैं। चंद ही लम्हात में उर्दू और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। माफी चाहते हैं, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार समाप्त कर सकेंगे।

0: समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्योगों जैसे

0: विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। पश्चिम एशिया में बदलती परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने आज नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर आयोजित अंतर मंत्रालयी बैठक को संबोधित करते हुए उपभोक्ता मामलों के विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा के मामले में मजबूत स्थिति में है। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सभी तेल विपणन कंपनियां सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी खुदरा दुकानों पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं। वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिसमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpgvitarakchayan.in पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने, संगठन के विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने के लिए भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल RN Nair ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृहमंत्री अमित शाह ने मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए गरज के साथ तूफानी मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज शेड बाय अपराजिता नायर। Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi today. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development, cooperation, health, education and energy. Foreign Secretary said, Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
2: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
1: Mr. Misri said both sides underlined the importance of connectivity and agreed to work as quickly as possible towards the completion of Kaladan multimodal transit transport project. President Draupadi Murmu has said Myanmar is an important partner in India's Neighbourhood First Act East and Mahasagar policies. Welcoming Myanmar President U Minong Lian at Rashtrapati Bhavan today, President Murmu said both the countries share deep cultural, civilizational and spiritual ties that go back to centuries. The President said Myanmar is India's gateway to Southeast Asia as it is the only ASEAN country

0: The cascading impact of the Ujjwala benefit, as you would have noticed, that what has happened is that this has also led to a very strong financial security in those households. So together, it has been a very impressive package of reforms that have been delivered, impressive package of benefits that have been delivered. Yes.
1: एब्सोल्युटली शुभमय अदिति, शुभमय अभी बात कर रहे थे किस तरह से ये बीपीएल हाउस होल्डर को खास करके उज्ज्वला योजना ने बेनिफिट पहुंचाया है रूरल वेमेन फोक को, खास करके उन्होंने चर्चा की कि किस तरह से स्मोक लेडन हमारा किचन हुआ करता था और सो ऑन एंड सो फोर्थ. लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ अगर हम बात करें वो है जल जीवन मिशन का. टैप वाटर ये एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारे, खास करके भारत देश में, सीजनल रेन्स एंड ऑल यू नो एंड वाटर बोर्न डिजीजेज, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता था. जल जीवन मिशन एक ऐसा एक स्कीम मतलब ये लेकर आया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जहाँ पर कि हर घर नल योजना की शुरुआत की गई. कैसे देखते हैं आप, खास करके अगर हम हेल्थ की बात करें, हेल्थ को प्रायोरिटी देने की बात करें तो?
2: ये बहुत एक महत्वपूर्ण योजना है सरकार की, जिसके तहत सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया गया है एक हाउस होल्ड की महिला को, क्योंकि हम जानते हैं कि इतने साल हो गए हमारी इंडिपेंडेंस को, लेकिन फिर भी अभी भी इतने सारे हाउस होल्ड्स ऐसे थे रूरल एरियाज़ में, ये रूरल हाउस होल्ड्स को जोड़ने की स्कीम है ज़्यादातर, और इतने सारे हाउस होल्ड्स थे कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते थे, पढ़ते थे. आज तक ऐसी खबरें छप रही थी कि 8-8, 9-9 घंटे तक लोगों को चल के जाना पड़ता है पानी लेने के लिए, या बहुत किलोमीटर्स का सफ़र तय करके दूर दराज इलाकों में लोगों को जाना पड़ता है. जो हिली टेरेन्स हैं उसमें पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी. जो डेजर्ट एरियाज़ हैं, खासकर जैसलमेर, राजस्थान और गुजरात, कच्छ के साइड में, बहुत सारे ऐसे हमें एविडेंस मिलते थे कि जहाँ पानी की समस्या इतने साल बाद भी आज़ादी के, मतलब ये एक किसी भी देश के लिए कोई अच्छी कन्वीनियंट स्थिति नहीं है, कन्वीनियंट पिक्चर नहीं है कि आप एक बेसिक सुविधा, जैसे आप पावर की बात कर लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लीजिए, या पानी की बात कर लीजिए, टॉयलेट्स की बात कर लीजिए, ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं जो आम तौर पर अभी तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन किसी वजह से जो नहीं हो पाई. और आपने सही कहा कि अगर आप स्वास्थ्य लाभ भी देखें इस योजना से, तो बहुत ज़्यादा लाभ होता है. और इस पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, बहुत लोगों ने बहुत सारे रिसर्च और एविडेंस बेस्ड पेपर्स भी निकाले हैं, जिससे ये भी कहा है कि इससे जल जीवन मिशन की वजह से बीमारियों में बहुत कमी आ रही है, चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स इंप्रूव हो रहे हैं, महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति इंप्रूव हो रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट, गर्भवती महिला के लिए ये एक बून की तरह आया है, क्योंकि बहुत सारी वाटर बोर्न डिजीजेस, गर्भवती महिला को गंदे पानी की वजह से बहुत कुछ सहना पड़ता था. और जल जीवन मिशन से क्या हुआ है, ना सिर्फ पेयजल घर तक गया है, बल्कि बहुत सारी, मतलब प्रोडक्टिव टाइम जो महिला का पानी इकट्ठा करने में जाता था, वो अब और चीज़ों में वो व्यस्त हो सकती है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर बन सकती है, वो लखपति दीदी योजना का लाभ उठा सकती है, क्योंकि उसके पास अब वक्त है, घर में पानी आ रहा है. ये सुनने में बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन बहुत बड़ा प्रभावी कदम है.
1: जी अदिति, और इसी क्रम में हम आगे बढ़ें. शुभ मैं सैनिटेशन की अगर बात करें, स्वच्छ भारत मिशन ये एक फ्लैगशिप मिशन जिसे कहें, और जब भी इसे इम्प्लीमेंट किया गया था उसके पहले शायद पता नहीं इस तरह की योजना कभी सुनने को नहीं मिली थी. सैनिटेशन की बात करें, स्वच्छ भारत मिशन जिसे ओपन डिफिकेशन एलिमिनेट ऑलमोस्ट कर दिया गया, मास कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस होल्ड एंड कम्युनिटी टॉयलेट्स, ये कोई छोटी बात नहीं है. शुभ मैं क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में?
0: हाँ, ये वाला चीज जो आप देखेंगे कि
1: जी
0: पानी का सप्लाई, स्वच्छ भारत मिशन, इन सभी चीजों से जो बदलाव अभी दिख रहा है वो है काफी सिग्निफिकेंट. आप इसके पहले एक आम बात थी कि बहुत सारी जगहों पे ओपन डिफिकेशन और उससे चलते जितने सारे तरह की बीमारियां, उनका खासकर मानसून में फैल जाना, बाकी समय में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, ये सब चीजें एक आम सरफ चीज था कि भाई होता है, क्या किया जाए. इसमें जो भी जो नेशनल हेल्थ सर्वे के आप डेटा देखेंगे, तो सबसे बड़ी बदलाव आप उस डेटा से देख सकते हैं कि ये एक से कहते हैं आपका एक मेजरमेंट आ गया है कि कितना और कितना प्रभावी ये सारे बदलाव हुए हैं. अभी आप, मैं आग्रह करूंगा कि कोई आकाशवाणी के जो लिसनर्स हैं, कभी अगर वो ट्रेन का सफर करे, दूर दराज के रास्ते में चलते हुए, एक जो कॉमन साइट था ओपन डेफिकेशन का, वो करीब एकदम वैनिश हो गया. और ये बहुत ही बड़ा बदलाव है, इसमें टाइम लगा, इसमें करने में शुरुआत में बहुत सारे हिचक आए, बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस करने पड़े, लोगों को बहुत सारे

0: सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है उन लोगों को जो टाइमली रीपेमेंट कर रहे हैं। प्लस एक बहुत महत्वपूर्ण जो इस स्कीम का बिंदु है वो ये है कि अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कर पा रहे हैं तो उस स्थिति में आपको कैशबैक इंसेंटिव भी दे रही है ये स्कीम। तो अभी तक अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि करीब 78 लाख 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स पूरे देश में हैं जो इसमें लाभान्वित हो चुके हैं, और करीब 17 हज़ार करोड़ तक का जो लोन है
1: जी
0: वो दिया जा चुका है। 122 लाख लोन्स दिए जा चुके हैं करीब 17 हज़ार करोड़ के।
1: राइट आदिति, लेट्स टॉक द वेमेन फोक लखपति दीदी अभियान। ये लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं बन चुकी हैं लखपति दीदी, और 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी है। कुछ बताएं इसके बारे में।
0: जी, ये एक बहुत बड़ी मुहिम है सरकार की। और किसान सम्मान निधि की जो बात हुई उसमें बस
1: जी
0: छोटी सी एक चीज़ जोड़ना चाहूँगी
1: जी
0: कि जब ये अमाउंट तय हो रहा था तब एक स्टडी करवाई गई थी कि फार्मर्स का कॉस्ट इनपुट क्या है, उनकी कॉस्ट कवर करने का ये कवायद है
1: जी जी
0: जो 6,000 की रकम तय की गई है। ऐसा पाया गया कि अगर ये दे दी जाए तो एटलीस्ट उनका जो इनपुट है वो कवर हो जाएगा। इस
1: जी
0: वजह
1: जी
0: से ये 6,000 पे तय हुई थी। पर अब जो महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, महिलाओं को क्या किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बहुत सारे वक्तव्यों में ये कहा है कि विकसित भारत के 4 स्तंभ होंगे, जिसमें से पहले हम चर्चा कर चुके हैं गरीबों की, उसके बाद हम चर्चा कर चुके किसानों की, तीसरा यूथ, आपने स्टैंड अप इंडिया की बात
1: जी
0: की, और
1: जी
0: अब चौथी आप बात कर रहे हैं महिलाओं की।
1: महिलाओं की
0: ये 4 स्तंभ हैं, जब तक आप इनको फाइनेंशियली एम्पावर नहीं करते तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि आप विकसित भारत के गोल को अचीव कर पाएं। जिसकी वजह से ये हुआ है कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की मूवमेंट इस देश में चल रही है। करीब 80 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इस वक्त कार्यरत हैं। उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में महिलाएं जो भाग ले रही हैं, लखपति दीदी योजना उसके तहत ये कोशिश कर रही है कि हर महिला 1 साल में 1 लाख रुपए अपने बलबूते पर कमा सके। उसमें तरीके तरीके के प्रावधान किए गए हैं, जैसे ड्रोन दीदी का प्रोग्राम भी उसके साथ इंटीग्रेट किया गया है। कुछ महिलाएं ड्रोन दीदी प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग लेकर खेतों में ड्रोन के माध्यम से मतलब पेस्टिसाइड्स छिड़काव कर रही हैं या और बहुत चीज़ें कर रही हैं। सिमिलरली कुछ लोगों को आप हॉर्टिकल्चर में इन्वॉल्व कर रहे हैं। इस तरीके से डाइवर्सिफाई किया जा रहा है, फिशरीज में भी इन्वॉल्व कर रहे हैं महिलाओं को। उनका फाइनेंशियल जो इक्वेशन है, फाइनेंशियल जो एम्पावरमेंट है, उसको बढ़ाने की कवायद है। और एक चीज़ की वर्ल्ड बैंक की अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई थी जिसको हम जिनी इंडेक्स के नाम से जानते हैं। वो देशों को मापती है इस माध्यम से कि कितनी इक्वल सोसाइटीज़ हैं और जो फ्रूट्स ऑफ पावर हैं वो कितनी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं लोगों में। ये जितना कम होता है इसका वैल्यू, उतना एक सोसाइटी को इक्वल माना जाता है। तो वहाँ मैं पढ़ रही थी कि भारत का जो वैल्यू है जिनी इंडेक्स में वर्ल्ड बैंक की, वो 25.5 है और चाइना का 35.7 है और US का 41.8 है। कहने का मतलब है कि ये जो सरकार ने एक लैंडस्केप तैयार किया है वेलफेयरिज्म का, इससे ये प्रूव हो रहा है, और ये थर्ड पार्टी ऑडिट है, दुनिया की बहुत बड़ी एजेंसी है वर्ल्ड बैंक की, ये हम और आप नहीं कह रहे हैं या सरकारें नहीं कह रही हैं यहाँ बैठकर, ये एक थर्ड पार्टी ऑडिट, एक इम्पॉर्टेंट एजेंसी कह रही है कि भारत में अब धीरे धीरे वेलफेयर बेनिफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने लगे हैं। और जैसा आपने अपने वक्तव्य में कुछ देर पहले कहा कि एक्सट्रीम पावर्टी जिसका मेजर क्या है, उसका मेजर है कि $3 से कम पर प्रतिदिन कितने लोग इस देश में रहते हैं। उसकी जो संख्या है वो 16.2% 2011-12 में थी और अब घट के 5.3% रह गई है। तो धीरे धीरे एविडेंस क्रिएट हो रही है। इसी वजह से बहुत सारी एजेंसीज जो सरकारी ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल एजेंसीज भी अपने एविडेंस बेस्ड पेपर्स में ये कह रही है कि भारत अब उस तरफ बढ़ रहा है जहां उसको विकसित भारत बनने के लिए जो मैकेनिज्म्स चाहिए थे वो इन प्लेस हैं। विकसित भारत का क्या मतलब है? विकसित भारत का मतलब है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ानी है हमने अपनी।
1: जी
0: अभी हम लो मिडिल इनकम कंट्री के कैटेगरी में हैं, हमें हाई इनकम कंट्री बनना है 2047 तक।
1: जी जी
0: वो
1: जी
0: बनने के लिए चर्चा की है आपने, जिन तबकों की, उनको आपको धीरे धीरे फाइनेंशियली इंक्लूसिव बनाना है, उनको एम्पावर करना
1: एम्पावर
0: है।
1: करना है। राइट राइट थैंक यू सो वेरी मच शुभमा आदिति, बोथ ऑफ यू फॉर हैविंग ज्वाइंड अस एंड शेयर योर व्यूज ऑन द टॉपिक। थैंक यू सो वेरी मच।
0: थैंक यू।
2: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं और उनका जमीनी असर। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक सुभमोय भट्टाचार्य जी और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन।

0: कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निशित कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR@nsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
1: In the special series, you are listening to a discussion on 12 years of the Modi government, key welfare schemes and their grassroots impact. Participants were Shubhamoy Bhattacharji, economic analyst, and Aditi Tandon, senior journalist. Moderator was Nishit Kumar. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और ये सफर है गीत मेरे मन में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं सदाबहार गाने। आज मैं हूँ आपके साथ माधुरी, तो सुनिए सदाबहार गाने बिना रुके।

और इसी के साथ गीत मेरे मनमीत का ये सफर यहीं तक। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे कल लागू किया गया। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बावजूद सरकार ने नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इस बीच वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्थिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकाल

0: ग्रीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने कल नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका की लघु व्यवसाय विकास मंत्री स्टेला टेम्बिसा नडाबेनी के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। बैठक में दोनों देशों के बीच सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने आज नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरा होने, संगठन के विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल में कल मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। उन्होंने कहा कि ये मंत्री सोनार बांग्ला के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसराइल ने लेबनान में अपने सैन्य अभियान तेज करने के साथ बेरूत में नए हवाई हमलों का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे युद्ध में एक बड़ा मोड़ बताया। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफानी मौसम की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि मध्य कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और करेकल में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज शेयर बाय अपराजिता नायर। Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U Min Aung Hlaing held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi yesterday. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development, cooperation, health, education and energy. Foreign Secretary said Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
2: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
1: Mr. Misri said both sides underline the importance of connectivity and agree to work as quickly as possible towards the completion of Kaladan multimodal transit transport project. President Draupadi Murmu has said Myanmar is an important partner in India's Neighbourhood First Act East and Mahasagar policies. Welcoming Myanmar President U Min Aung Hlaing at Rashtrapati Bhavan yesterday, President Murmu said both the countries share deep cultural, civilizational and spiritual ties that go back to centuries. The president said, Myanmar is India's gateway to Southeast Asia, as it is the only ASEAN country that shares a land border with India. Congratulating President Hlaing on assuming office as the president of Myanmar, President Murmu said that India looks forward to working closely with the new government to strengthen the bilateral partnership further. The India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement has come into force yesterday. Commerce and Industry Minister Piyush

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और निशिगंधा में आज पहला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है सौदागर।

थम जाती है और भीतर की आवाजें खुद को बहुत साफ साफ सुनाई देने लगती हैं। और यही वो क्षण होता है जब हर इंसान अपने सबसे करीब होता है, खुद को महसूस कर सकता है, खुद को समझने की कोशिश करता है और जीवन से जुड़ी सच्चाई को बहुत करीब से जान लेता है। अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में और फिल्म का नाम है प्रेम पर्वत।

आप सुन रहे हैं निशिगंधा, और निशिगंधा में आज हम बात करेंगे रात की। जी हाँ, रात जैसे जैसे ढलती जाती है और धीमी हवा में जब खामोशी उतरती है तो लगता है जैसे समय ठहर गया हो। हर सांस में एक अनकही दास्तां छिपी होती है और हर धड़कन किसी अनजाने अदृश्य संगीत से जुड़ी होती है। और यही वो पल होता है जब मन खुद से बातें करने लगता है। बाहर की हलचल

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीर कर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और अगला गीत सुमन कल्याणपुर की आवाज में और मुकेश की आवाज में, फिल्म का नाम है मेरी सूरत तेरी आंखें।

ये जो रात की खामोशी होती है ना, जिसे हम कभी कभी कहते कहते अकेलेपन का नाम देते हैं, डर का नाम देते हैं, भय का नाम देते हैं, तो कभी कभी ये रात की खामोशी, ये सन्नाटा हमारे लिए एक सुंदर साथ भी बन जाता है। उसकी गोद में बैठकर हम अपने दुखों को गिनते हैं, अपनी तकलीफों को गिनते हैं, अपने संघर्षों को गिनते हैं, और फिर पाते हैं कि हर संघर्ष के पीछे, हर दुख के पीछे, हर तकलीफ के पीछे एक सीख छिपी होती है। हर आंसू किसी अनकहे साहस की कहानी होती है, और यही खामोशी हमें मजबूत करती जाती है। हम समझते हैं कि टूटना किसी भी कहानी का अंत नहीं होता, बल्कि हर टूटन से एक नई शुरुआत होती है, एक नई कहानी रची जाती है। ठीक वैसे ही जैसे अंधेरे के बाद ही उजाले का जन्म होता है, और हर थकान के बाद एक सुकून भरी नींद आती है, और यही हम सबके जीवन का सबसे खूबसूरत सीक्रेट है, सबसे सुंदर रहस्य है, और हम

से समझना भूल जाते हैं। वो कहते हैं ना कि न तुझसे गरज है न सूरत से तेरी, मुसव्विर के हम तो कलम देखते हैं, मुसव्विर के हम तो कलम देखते हैं। जिंदगी की परिभाषा जिन शब्दों में लिखना चाहें उस शब्द में लिख सकते हैं, जिंदगी ठीक वैसे ही नजर आने लगेगी। पर लिखते वक्त में हमेशा याद रखें कि कहानी चाहे जैसी भी रही हो, कहानी का अंत कैसा बनाना है ये सब कुछ हम पर निर्भर करता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर निशिगंधा, और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। अगला गीत फिल्म का नाम है ब्रह्मचारी, आवाज है सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। अभी छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है नगीना, आवाज है अनुराधा पौडवाल की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मिलते हैं 1:10 पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन औं लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे कल लागू किया गया। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बावजूद सरकार ने नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इस बीच वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल ने नई दिल्ली में स्वच्छ गांव सुरक्षित जलवायु अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य 1 अप्रैल 2026 से लागू हुए ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 के बारे में लोगों को जानकारी देना है। पश्चिम बंगाल में कल मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आर एन रवि ने

0: कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। उन्होंने कहा कि ये मंत्री सोनार बांग्ला के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने दो विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के एक हिस्से के ढहने की घटना की जांच के लिए दो अलग अलग उच्च स्तरीय जांच समितियों का गठन किया है। इस हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। हमीरपुर के जिलाधिकारी अभिषेक गोयल ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा गठित 3 सदस्यीय जांच समिति की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला के बीच संघर्ष को कम करने पर सहमति बन गई है। यह समझौता इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत और मध्यस्थों के माध्यम से हिजबुल्ला से संपर्क के बाद सामने आया। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफानी मौसम की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में भी आज गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U Min Aung Hlaing had detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi yesterday. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Minister Secretary Vikram Misri said both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development cooperation, health, education and energy. Foreign Secretary said Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
2: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
1: Mr. Misri said both sides underlined the importance of connectivity and agreed to work as quickly as possible towards the completion of Kaladan multimodal transit transport project. President Draupadi Murmu has said Myanmar is an important partner in India's Neighbourhood First Act East and Mahasagar policies. Welcome Myanmar President U Min Aung Hlaing at Rashtrapati Bhavan yesterday, President Murmu said both the countries share deep cultural, civilizational and spiritual ties that go back to centuries. The President said Myanmar is India's gateway to Southeast Asia as it is the only ASEAN country that shares a land border with India. Congratulating President Hlaing on assuming office as the President of Myanmar, President Murmu said that India looks forward to working closely with the new government to strengthen the bilateral partnership further. The Indian-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement, SEPA, has come into force today. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the SEPA will deepen the economic and strategic ties between the two nations. Addressing media in New Delhi, Mr. Goyal said that this partnership agreement is not simply a trade agreement, it is a statement of civilizational trust. The union minister informed that from day one, India will secure duty-free access on 98% of Oman's tariff lines, covering over 99% of India's export to Oman. Mr. Goyal informed that multiple consignments are being shipped yesterday from Mumbai, Kolkata and Chennai to mark the operationalization of the agreement. Prime Minister Narendra Modi yesterday shared an article written by Mr. Goyal on the India-Oman Comprehensive Economic Partnership.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने लेकर आपके साथ हूं मैं जयति। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और गीत सुहाने में जो पहला गीत आपको हम सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है मेरे सनम, आवाज है मोहम्मद रफी की।

रात का ये शांत पहर, धीरे धीरे बहती हवा, जैसे कोई पुराना गीत गुनगुना रही हो, उसमें यादों की खुशबू घुली होती है। कभी बचपन की हंसी, कभी जवानी की बेचैनी और कभी बुढ़ापे की थकान। हर सांस में एक कहानी छिपी होती है कहीं ना कहीं, जो हमें बताती है कि जीवन केवल जीने का नाम नहीं बल्कि महसूस करके जीने का नाम है। जीवन में जितने भी पल गुजर रहे हैं ना, उन सबको महसूस करते जाइए। हर कहानी के पीछे हर पल एक नई सीख देकर जाता है। जरूरत होती है उसे दिल से महसूस करने की। और अगला गीत, फिल्म का नाम है जुर्म, आवाज है कुमार शानू और साधना सरगम की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। गीत सुहाने में जो अगला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है शागिर्द और आवाज है लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं गीत सुहाने और साथ हूं मैं जयती। कहते हैं कि जब सब कुछ शांत हो जाता है तब अगर कुछ सुनाई देता है तो वो होती है दिल की आवाज, और ये दिल की आवाज सन्नाटे में सबसे तेज सबसे ऊंची सुनाई देती है, और वो सुनाई देकर उसकी धक धक धक धक धक धक हमें याद दिलाती है कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और हमें कहां जाना है, हम क्या कर रहे हैं। ये जो सब कुछ होता है ना, ये हमारा खुद के साथ संवाद होता है, और ये संवाद दुनिया का सबसे बेहतरीन संवाद होता है। जब हम अकेले में खामोशी में खुद से बातें करते हैं, और यही संवाद जब हम जानने की कोशिश करते हैं कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, कहां जाना है, हमें क्या करना है, हमारी मंजिल कहां है, तो वो हमें भीतर से रोशन कर देता है, बताता है कि सच्चा सुख जो है वो बाहर नहीं है बल्कि भीतर की शांति में है। यही वो पल होता है जब हम खुद को पाना सीखने लग जाते हैं, खुद से बातें करना सीखने लग जाते हैं, और इसी क्रम में हमें पता चलता है कि हमारी मंजिल कहां बैठकर हमारा इंतजार कर रही है। अगला गीत फिल्म का नाम है हसीना मान जाएगी, आवाज है मोहम्मद रफी की।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। और वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि 2 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ। आवाज है मुकेश और लता मंगेशकर की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे कल लागू किया गया। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बावजूद सरकार ने नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इस बीच वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरा होने, संगठन के विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने के लिए भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल में कल मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आर.एन. रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया। महाराष्ट्र विधान परिषद की 17 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया कल संपन्न हुई। सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने सभी 17 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी 11 सीटों पर, शिवसेना 4 सीटों पर और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। विपक्षी महाविकास अघाड़ी MVA ने कांग्रेस को 8 सीटें, शिवसेना UBT को 6 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार को 3 सीटें आवंटित की हैं। मतदान और मतगणना दोनों 22 जून को होंगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला के बीच संघर्ष को कम करने पर सहमति बन गई है। यह समझौता इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत और मध्यस्थियों के माध्यम से हिजबुल्ला से संपर्क के बाद सामने आया है। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफानी मौसम की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi and President

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और रात सुरमई में जो आज आप पहला गीत सुनेंगे, आवाज है लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है अभिमान। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

कभी कभी लगता है कि तन्हाई बिल्कुल एक दर्पण की जैसी होती है। तन्हाई में बैठकर हम अपना असली चेहरा देखते हैं, अपने व्यक्तित्व को जानते हैं, पहचानते हैं, और हमारा सामना हमारे उस व्यक्तित्व से होता है जो हम दुनिया को नहीं दिखाते, जिसमें हमारी कमजोरी होती है, हमारा डर होता है और हमारी ताकत भी होती है। और यही तन्हाई, यही अकेलापन हमें सिखाता है कि अगर हम किसी भय के कारण, किसी डर के कारण, किसी कमजोरी के कारण अगर खुद से भाग रहे हैं तो भागना संभव नहीं है। खुद को अपना लेना, चाहे हम जैसे भी हैं, हम अच्छे हैं, ये सबसे बड़ा साहस है। और यही साहस हमें आगे बढ़ाता है और हमारे जीवन को अर्थ देता है, हौसला देता है। तो खुद को अपनाना सीखिए। हम जो हैं, हम इस दुनिया का सबसे बेहतर क्रिएचर हैं, भगवान के द्वारा बनाए गए। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है हसीना मान जाएगी।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से,
0: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
1: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सिर्फ FM गोल्ड पर।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है बॉर्डर, आवाज है सोनू निगम और अलका याग्निक की।

किसी ने कहा कि यादें अक्सर आती हैं और चुपचाप लौट जाती हैं, पर यादें जो होती हैं ना, वो चुपचाप लौटती हैं या नहीं लौटती हैं, ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक अनुभव होता है। पर यादें हमें उन पलों में ले जाती हैं जहां हंसी थी और हंसी के साथ थोड़े से आंसू भी थे, पर अनगिनत अधूरी बातें थीं।

यादों ने ही सिखाया कि हर याद एक पुल का काम करती है जो हमें अतीत से जोड़ती है, और ये पुल अतीत से जोड़कर हमें सुकून देता है, पर कभी कभी वो हमें थोड़ा बेचैन भी कर देता है। लेकिन हर याद हमें ये सिखा कर जाती है कि बीता हुआ समय हमारे भीतर जीवित रहकर हमें जीवंतता प्रदान करता रहता है। आप सुन रहे हैं रात सुरमई, और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है मेरे सनम, आवाज है आशा भोसले की।

और अब वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे 3 बजे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। तो फिर मिलने के वादे के साथ जयति चाय की अनुमति आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत और फिर मिलने के वादे के साथ। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कल से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बावजूद सरकार ने नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इस बीच वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दी है। पश्चिम बंगाल में कल मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आर एन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया है। सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने महाराष्ट्र विधान परिषद की सभी 17 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी 11 सीटों पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने कांग्रेस को 8 सीटें, शिवसेना यूबीटी को 6 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार को 3 सीटें आवंटित की हैं। राज्य विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया कल संपन्न हुई। मतदान और मतगणना दोनों 22 जून को होंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के एक हिस्से के ढहने की घटना की जांच के लिए 2 अलग-अलग उच्च स्तरीय जांच समितियों का गठन किया है। इस हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुंझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड और अनिल डी अंबानी के खिलाफ FIR दर्ज की थी, जिसमें उन पर बैंक को 2,929 करोड़ रुपये से अधिक

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का। आप सबका एक बार प्यार भरा स्वागत करती हूँ मैं प्रोग्राम हमराही में। मैं हूँ आज आपके साथ आपके दोस्त भारती और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की इस प्यारे से गीत के साथ। गीत है फिल्म सच्चा झूठा से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

उसकी मुस्कान जैसे रात की ठंडी हवा का झोंका, जो दिल की सारी थकान चुरा ले जाए और हर पल को खूबसूरत बना दे।

अभी आपने गीत सुना फिल्म लहू के दो रंग से। इंतजार भी कितना प्यारा होता है जब यकीन हो कि कोई हमें याद करके मुस्कुरा रहा होगा। हर बीतती रात फिर उम्मीद बन जाती है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और प्रोग्राम है हम राही। कुछ लोग दिल में इस तरह बस जाते हैं, कुछ लोग दिल में इस तरह बस जाते हैं कि रात हो या दिन, हर ख्याल उन्हीं से शुरू होता है और उन्हीं पर आकर ठहर जाता है।

कभी कभी प्यार को बस दो धड़कनों की दुनिया चाहिए, कभी कभी प्यार को बस दो धड़कनों की दुनिया चाहिए होती है, जहां बातें कम और एहसास ज्यादा सुनाई दे।

अभी आपने गीत सुना फिल्म बॉबी से लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में। कुछ रिश्ते आवाज़ से नहीं, दिल की खामोश पुकार से जुड़ा जाया करते हैं, जैसे हमारा रिश्ता है आपसे गीतों के साथ।

रात की ठंडी हवाओं में जब किसी का ख्याल महकने लगे तो हर वादी मोहब्बत का गीत गुनगुनाने लगती है। और इसी के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ मैं कार्यक्रम के आखिरी गीत के साथ। जल्द मुलाकात होगी यानी 4:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर प्रोग्राम अरुणिमा, और गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। तो जल्द मिलते हैं, तब तक सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर, और ये प्यारा सा गीत आपके लिए।

0: मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे कल लागू किया गया। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बावजूद सरकार ने नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इस बीच वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। पश्चिम बंगाल में कल मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आर एन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया है। सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने महाराष्ट्र विधान परिषद की सभी 17 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी 11 सीटों पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने कांग्रेस को 8 सीटें, शिवसेना यूबीटी को 6 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार को 3 सीटें आवंटित की हैं। राज्य विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया कल संपन्न हुई। मतदान और मतगणना दोनों 22 जून को होंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के एक हिस्से के ढहने की घटना की जांच के लिए 2 अलग-अलग उच्च स्तरीय जांच समितियों का गठन किया है। इस हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के अधिकारी अमिताभ झुंझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल डी अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला के बीच संघर्ष को कम करने पर सहमति बन गई है। यह समझौता इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत और मध्यस्थों के माध्यम से हिजबुल्ला से संपर्क के बाद सामने आया है। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news red.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और समय हो गया है प्रोग्राम अरुणिमा का। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त भारती, और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की इस प्यारे से गीत के साथ। गीत है फिल्म राजकुमार से सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाज़ में।

इस गीत को संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। आगे बढ़ते हैं, अगला गीत सुनते हैं कार्यक्रम अरुणिमा का। फिल्म अंधा कानून से किशोर कुमार की आवाज में गीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और संगीतकार आनंद बख्शी।

और अभी आपने गीत सुना फिल्म अंधा कानून से, और इस गीत के गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गायक किशोर कुमार। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म नया दौर से मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और प्रोग्राम है अरुणिमा। और आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म दुल्हन भाई चुपिया मन भाई से हेमलता की आवाज़ में, गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

पर अब समय कह रहा है कि आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले बस यही कहूंगी कि आप कहीं मत जाइएगा, हाजिर होंगी 5:10 पर लेकर कार्यक्रम भोर सुहानी। छोड़े जा रही हूँ आपको एक बहुत ही प्यारे से भजन के साथ। भजन है को अपनी आवाज से सजाया है भजन सम्राट श्री गोविंद भार्गव जी ने। आनंद लीजिए इस भजन का और जल्द मुलाकात होगी 5:10 पर।

0: विक्रम मिसरी ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे कल लागू किया गया। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। पश्चिम बंगाल में कल मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आर एन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतब्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने की जांच के लिए 2 उच्च स्तरीय समितियों की गठन किया है। इस हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा गठित समितियों ने जांच शुरू कर दी है। हमीरपुर के जिलाधिकारी अभिषेक गोयल ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा गठित 3 सदस्यीय जांच समिति की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी कर रहे हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ है। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ FIR दर्ज की थी। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी सांसद और प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने पत्रकारों से बातचीत में पिछले 12 वर्ष के दौरान मोदी सरकार की सेवा, संगठनात्मक विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने के प्रयासों पर हुए विचार विमर्श का ब्यौरा साझा किया। ईरान ने चेतावनी दी है कि लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल के हमलों से अमेरिका के साथ संघर्ष विराम पर असर पड़ सकता है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरीय इलाकों में हमले का आदेश दिया था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा कि अमेरिका के साथ हुए समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम शामिल है। किसी एक स्थान पर संघर्ष विराम का उल्लंघन का असर सभी मोर्चों पर पड़ेगा। इससे पहले इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा था कि ईरान समर्थित हिजबुल्ला के मिसाइल और ड्रोन हमलों के जवाब में लेबनान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान की चेतावनी जारी की है। विभाग ने इन क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में भी आज गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U Min Aung Hlaing held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi yesterday. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among others.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक रक्षा, सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव

एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय हो गया है प्रोग्राम भोर सुहानी का। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम के इस भजन के साथ।

ये बहती हवाएं जैसे संदेश दे रही हैं कि नई सुबह उम्मीदों का उत्सव है। आइए इस ताजगी को अपने दिल में बसाकर पूरे दिन को मुस्कान और ऊर्जा से भर दें।

जीवन की राहों में साथ, विश्वास और हौसला बहुत जरूरी है। मंजिल चाहे दूर हो, लेकिन कदम अगर उम्मीदों से उठें, तो रास्ते भी गीत बन जाते हैं।